0: क्या करता हो, उसके हृदय में बैठ करके उसके अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अंधकार को जला करके भस्म कर देता हूं। क्या अन्य का नाम भी नहीं लेना, नाम लेना नहीं, मैं तो एक ही एक अभेद दर्शन करता हूं। अभेद अभेद दर्शनम ज्ञानम, अज्ञानम भेद दर्शनम, जहां भेद आएगा वहां अज्ञान है, समझे कि नहीं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अज्ञानम भेद दर्शनम, अज्ञम सत मोक्ष लाभाय, मृत्यवे जन्म मृत्यवे द्वितीय जन्म मृत्यवे है। अभी समझ में आया नहीं? अरण्य का मतलब अभिदर्शन, अरण्य का मतलब अभिदर्शन। तो अभिदर्शन का नाम ज्ञान है, भेद दर्शन का नाम अज्ञान है। जो अन्य अन्य अन्य अन्य को जानता है वो भेद दर्शन है। तो अभेद दर्शन क्या करेगा? ज्ञान के लिए। भेद दर्शन क्या करेगा? अज्ञान के लिए। तो अज्ञान क्या करेगा? जन्म मृत्यु देगा। भेद दर्शन क्या करेगा या अभेद दर्शन क्या करेगा? मोक्ष देगा। अज्ञम सात मोक्ष लाभाय, द्वितीयम द्वितीयम नहीं समझे, द्वैत द्वैत, हाँ द्वितीय जन्म मृत्यु को देगा। भेद दर्शन जन्म मृत्यु को देगा। जब तक तो भेद दर्शन बना रहेगा तब तक तो जन्म मृत्यु के छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ ये किससे? भगवान का प्रागट्य होने पर भी अज्ञान का नाश कहाँ होगा? भगवान कहते मैं अज्ञान नाश करने की कृपा करूं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कारण शरीर, कारण शरीर हुआ अज्ञान, तो अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से, तो ज्ञान होगा तब ना अज्ञान नाश होगा। हाँ कारण शरीर का हो अज्ञान का हो बात एक ही है, नहीं बात? कारण शरीर का हो अथवा अज्ञान का हो नाश एक ही बात है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयतु प्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आ श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आ।

0: स इषूहस्तैः सनीषङ्गिभिर्वशी सज्ञस्रष्टा सयुध इन्द्रोऽगणेन
1: सज्ञसृष्टजित्सोमपा बाहुषर्ध्युग्रधन्वा प्रतीहिताभिरस्ता बृह

चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माग्निश्च शुक्रश्चारुतपाश्चात्यज्ञाः ईदृञ्चा अन्यादृञ्चा सदृञ्चा।

ये सारा का सारा विश्व प्रपंच मूल रूप में अपने ही अंदर हैं। आप और हम, यह और वह, सब के सब एक ही सत्ता में स्थित हैं, उसी सत्ता के अंतर्गत है। जैसे सूर्य के प्रकाश के अंदर ये सब हैं, सूर्य के प्रकाश के बाहर ये कोई भी नहीं है। ये कुर्सी, टेबल, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, पशु पक्षी, मनुष्य, राजा, प्रजा, मंत्री, चपरासी, सबके सब उसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। या यूं कहिए कि सब के सब उस आकाश के अंतःपाती हैं। इसी तरह ये सारा का सारा विश्व प्रपंच निज अंतर्गत हमारे ही अंदर है। वास्तव में आप लोग मेरे अंदर हैं, आप मेरे से बाहर नहीं है। मुझे भ्रांति हो रही है कि आप बाहर हैं। मैं आपके अंदर हूं, आपसे बाहर नहीं हूं। आपको भ्रांति हो रही है कि बाहर है। ये बात

0: प्रथम श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी ने संकेत किया। ये भ्रांति कब टूटेगी और ये सब ही मेरे ही अंदर हैं, ये अपरोक्ष अनुभव कब होगा? तो उसका उत्तर दिया है कि यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्। जब व्यक्ति उस माया निद्रा से जगता है तब वह व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरी सत्ता के अलावा जगत में कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, क्योंकि सत अनेक नहीं हो सकते, सत एक है और जो सत है वही सत्ता है। सत्ता अलग और सत अलग ऐसा नहीं मान लेना। हर वस्तु में जो सत्ता है, जो होनापना है, वो एक ही सत्ता सभी में सन्निहित है। इस प्रकार के जगाने वाले जो गुरु हैं, उस माया निद्रा से जगा देने वाले जो गुरु हैं, वो कोई लौकिक और कोई साधारण गुरु नहीं, वो तो साक्षात ज्ञानमूर्ति भगवान शिव ही है, क्योंकि उसमें से जगाने में वही दक्ष हैं। हमारे मां बाप दक्ष नहीं है। दक्ष माने समर्थ कुशल। हमारे मां बाप तो रात्रि के निद्रा से जगाने में कुशल हैं, मोह निद्रा से जगाने में समर्थ नहीं, कुशल नहीं है, इसलिए उनको दक्ष कहा। भगवान शिव को दक्ष कहा, क्यों? क्योंकि वह चाहे वो चाहें प्रसन्न हो जाएं, तो वह जीवात्मा चाहे जैसे भी निद्रा में सोया होगा वो जगा देंगे। जहां भी सोया होगा पृथ्वी के इस किसी भी कोने में जाकर सोया हो, पहले पहले क्या होता था, व्यक्ति को कुछ ज्यादा आराम से सोना होता था तो घर में अनेक बच्चे होते थे, छुट्टी के दिन में बच्चों का भी छुट्टी, स्कूल की छुट्टी, स्कूल जाना नहीं पड़ता है, अब बाप की भी छुट्टी होती है, उसको भी नौकरी जाना नहीं है। अब बाप ये चाहता है कि मैं आज खूब दिन भर सो, बच्चों को छुट्टी है कि वो चाहते कि दिन भर खेलें। तो बंबई की अवस्था में तो कहां खेलेंगे, तो उसी रूम में जाकर खेलेंगे जहां बाप सोना चाहता है कि नहीं, बोलो। तो वो चाहता है कि ऐसी जगह जाकर सोऊं कि सो जाऊं कि जहां बच्चे न पहुंचे। तो हॉल में सोने लगेगा तो बच्चे, तो वो क्या करता है कि दरवाजा बंद करता है, बच्चों को कहता है हॉल में खेलो तुम लोग, मुझे कमरे में सोने दो, एकांत में सोने दो। अरे बाबा तुम कहीं भी सो जाओ, वो यदि चाहेगा जगाना तो तुमको जगा देगा, खाट के नीचे सो जाओगे तो भी जगा देगा, खाट के ऊपर सो जाओगे तो भी जगा देगा। इसीलिए उसको कहा दक्ष, परमात्मा को इसीलिए कहा दक्ष। और उसी दक्षत्व होने के चलते ही शिव को दक्षिणा मूर्ति कहा। मूर्ति शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, तो दक्ष स्वरूप यानी दक्षिणा स्वरूप, कुशल स्वरूपता, वो जो शिव की स्वरूप है दक्षिणा मूर्ति, उसको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि वह जगा देता है हमको। प्रश्न यह है कि अभी तक क्यों नहीं जगा रहा है? क्या यह राजी है परमात्मा कि हमारे सोने में ही वह राजी है कि सोते रह जाएं? कई बार ऐसा होता है कि घर में मां को कुछ काम करना होता है और बच्चे सो रहे हो तो मां यही चाहती है कि वह सोते रह जाएं, है ना? और प्रार्थना भी करती है कि जल्दी ना उठे तो मैं अपना काम पूरा कर लूं। आप लोग तो अनुभवी हो माताओं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने बड़ा किया है, तो उस अवस्था में आपके मन में यही भावना आई है कई बार, ये बच्चे सोते रह जाएं तो अपना काम करें, और कभी किसी कारण से बच्चा जल्दी उठ गया तो फिर कहते हैं कि आज बच्चा जल्दी उठ गया, काम ही नहीं कर पा रहे, सोता भी नहीं है। कई बार बच्चों का सो जाना भी मां को इष्ट है, और कई बार बच्चों को फिर सोते रह जाना इष्ट नहीं है, जग जाना इष्ट है। अब कहीं जाना हो, बच्चा सो रहा है, बीच में उठाओ तो रोएगा, और अपने आप उठ जाए तो नहीं रोएगा, तो फिर प्रार्थना करती है मन ही मन जल्दी उठ जाए तो अच्छा है। तो जैसे हमारी अवस्था है उसी तरह से परमात्मा के भी हो, वो भी हमको सुलाए रखकर कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहता होगा, शांति से भजन करना चाहता होगा, इसलिए हमको नहीं जगा रहा है। और दूसरी बात ये भी जानता है कि उठेगा जगेगा तो ये तूफान करेगा, सोते रह जाओ तो तूफान क्या करेगा, ये तो हो सकता है कौन बहुत से प्रयोजन है, इसलिए हमको शायद नहीं जगा रहा है, तो जगाएगा कभी न कभी तो जगाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जगने की वासना है, इसलिए उस वासना कामना इच्छा वो परमात्मा कभी न कभी सुनेगा तो जगाएगा। प्रार्थना करते रहो, उपनिषद सुनते रहो, दक्षिणामूर्ति सुनते रहो, तो कभी न कभी वह जगाएगा, तो आशा करें। अब इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यहां पूर्व पक्ष सुरेश्वराचार्य जी ने पूरा का पूरा इस श्लोक में दार्शनिक पक्ष को उपस्थापित किया है। परमात्मा अकेले ही सारे जगत को उत्पन्न करता है, इससे ये सिद्ध हुआ वेदांत के दृष्टि से कि परमात्मा खुद अकेले ही उपादान कारण भी बन जाता है और निमित्त कारण भी बन जाता है और सहकारी कारण भी खुद बन जाता है। ये प्रथम श्लोक का आशय है। इस पर असहमति व्यक्त करते हुए अन्य दार्शनिक लोग कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है। एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, किसी कार्य के प्रति वह उपादान कारण भी बने और निमित्त कारण भी बने और सहकारी कारण भी बने, ये संभव नहीं, कहीं देखा नहीं गया है, अनुभव में नहीं आया, देखा नहीं गया है। सर्वत्र यही प्रसिद्धि है, अनुभव में आया है, प्रमाण भी यही है कि किसी भी कार्य के लिए उपादान कारण भिन्न होना चाहिए और निमित्त कारण भिन्न भिन्न होना चाहिए। ये सारा का सारा विश्व प्रपंच परमाणु से उत्पन्न हुआ है, परमाणु उपादान कारण रूपा है, ये बात समझ लेना आप। ये न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शनों की मान्यता है। सृष्टि के आदि में चार वस्तु नित्य हैं, पांच वस्तु नित्य हैं, ईश्वर नित्य है, ईश्वर कभी पैदा नहीं होता किसी से और कभी नाश नहीं होता है किसी के द्वारा। ईश्वर न किसी से पैदा होता है और न किसी से नाश होता है, न स्वयं नष्ट होता है। ईश्वर को नाश करने का कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं है, और ईश्वर खुद भी नष्ट नहीं होगा, अन्य कोई व्यक्ति भी, अन्य कोई वस्तु भी ईश्वर की सत्ता को नाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर नित्य है, अजन्मा नित्य है। उसके साथ साथ नैयायिक वैशेषिक लोग कहते हैं कि परमाणु भी इसी तरह नित्य है। परमाणु को कोई किसी ने बनाया नहीं, वह सृष्टि के आरंभ में ही थे, और परमाणु को नाश करने का कोई किसी के पास क्षमता नहीं। ईश्वर में भी परमाणु को नष्ट करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इन परमाणु नित्य है। उसी तरह वे लोग काल को नित्य मानते हैं, समय को नित्य मानते हैं, न्याय वैशेषिक लोग। ये जो समय है वह भी नित्य है, समय को किसी ने बनाया नहीं और समय कभी नष्ट नहीं होगा। जितने भी बनने वाले पदार्थ हैं वो किसी समय में बनेंगे, और जितने भी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं वो किसी न किसी समय में नष्ट होंगे। समय न उत्पन्न होगा न नष्ट होगा, इसलिए तीसरा नित्य वस्तु काल मानते हैं नैयायिक और वैशेषिक दार्शनिक लोग। और चौथा नित्य वस्तु दिक, दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वृद्धाधा, ये जो दिशाएं हैं इनको भी नित्य मानते हैं। और पांचवा नित्य मानते हैं मन। मन भी नित्य है क्योंकि परमाणु रूप है, इसलिए मन भी नित्य है। आत्मा नित्य है। अनित्य क्या है तो फिर तुम्हारे सामने, बोले इनके द्वारा उत्पन्न हुए हुए जो कार्य हैं वो अनित्य हैं। इसलिए पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्य रूपा, परमाणु रूपाश्च। ये जो पृथ्वी अभी हम जो देख रहे हैं ये कार्य रूप है, नष्ट होगा तो ये पृथ्वी, लेकिन ये पृथ्वी जिस परमाणु उपादान कारण से बना है, पृथ्वी नष्ट होने पर भी इस पृथ्वी के जो परमाणु छोटे कण हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अनंत आकाश में उड़ते रहेंगे। तब वही परमाणु ईश्वर के इच्छा से, संकल्प से, प्रयत्न से किसी काल में, किसी देश में एक आपस में मिलने लग जाएंगे। तब मिलते मिलते सारे परमाणु एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब ये पृथ्वी सिद्ध होती है, पृथ्वी पैदा होता है। इसी को आरंभवाद कहा, इसको वेदांत माने आरंभवाद, नैयायिक लोग आरंभ कहते हैं। सृष्टि का जो आरंभ है, पहला आरंभ है, अलग अलग परमाणु जुड़ने का आरंभ, किसी देश में, किसी काल में, किसी निमित्त कारण के इच्छा से, संकल्प से वो जुड़ना आरंभ होता है। तो वो संकल्प वाला ईश्वर हो गया, देश पहले से विद्यमान है, काल पहले से विद्यमान है, परमाणु पहले से विद्यमान है। तो उस पहले से विद्यमान देश में, पहले से विद्यमान काल में, पहले से विद्यमान ईश्वर के संकल्प से, पहले से विद्यमान ये परमाणु एक दूसरे से जुड़ना आरंभ होते हैं, तब जुड़ते जुड़ते पृथ्वी बन जाता है। ये परमाणुवाद, आरंभवाद नैयायिकों का है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, उपादान कारण भिन्न चाहिए और निमित्त कारण भिन्न चाहिए। और तुमने तो यह कहा कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, अकेला परमात्मा था, उस परमात्मा से ये सारे जगत उत्पन्न हो गए। तो तुम्हें यह बताना होगा कि परमात्मा निमित्त कारण है कि उपादान कारण है, तुम्हें स्पष्ट करना होगा। दो कारणों में से एक कारण मान लो। परमात्मा यदि निमित्त कारण मानते हो तो परमात्मा जड़ हो जाएगा, जैसे परमाणु जड़ है निमित्त कारण रूप। तो निमित्त कारण मानते हो परमात्मा को तो जड़ हो जाएगा। परमाणु माने उसको नहीं, उपादान कारण मानते हो तो परमात्मा जड़ हो जाएगा। परमात्मा को उपादान कारण मानते हो तो परमात्मा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के उपादान कारण परमाणु हैं तो परमाणु जड़ हैं, इसी तरह सारे जगत का उपादान कारण परमात्मा मानते हो तो परमात्मा को भी जड़ होना चाहिए। और जड़ परमात्मा होगा तो फिर चैतन्य कौन होगा, बताना पड़ेगा कि निमित्त कारण कोई चैतन्य तुमको परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा बताना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा को निमित्त कारण मानते हो तो परमात्मा से भिन्न उपादान कारण, दूसरा जड़ उपादान कारण परमात्मा से भिन्न अस्तित्व वाला मानना पड़ेगा। कहीं भी ये देखने में नहीं आया व्यवहार में प्रयोग में कि कुम्हार कुंभकार खुद मिट्टी बनकर घड़ा बना लिया तो वह मिट्टी भी बना और कुम्हार भी बना रहा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। उन लोगों का एक पक्का दृष्टांत ही यही है, कुंभकार यानी कुम्हार और मिट्टी, तो मिट्टी को कुंभकार से भिन्न जड़ उपादान कारण घटकार्य के लिए, कुंभकार को मिट्टी से भिन्न निमित्त उपादान कारण चैतन्य घट बनाने के लिए, ये अलग अलग सत्ता अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो कार्य उत्पत्ति से पहले पांच वस्तु तो होनी चाहिए चाहिए। तुम केवल एक मान रहे हो तो कैसे कार्य उत्पन्न होगा। और जो कुम्हार कुंभकार घड़ा बनाएगा तो किसी न किसी स्थान में बनाएगा, शून्य में तो बनाएगा नहीं। कोई भी कार्य शून्य अवकाश में तो बनाएगा नहीं, कोई न कोई स्थान चाहिए, आधार चाहिए। किस आधार में बैठकर ईश्वर जगत बनाएगा? निराधार ईश्वर जगत के निर्माण कर पाता है कोई करता? निराधार कोई वस्तु को उत्पन्न कर सकता है? ये पूर्व पक्ष है सब। और वो ईश्वर बनाएगा किसी न किसी समय में, बिना समय का बनाएगा। कितने समय में जगत बनाना है, कितने समय में जगत रखना है, कितने समय में जगत को नष्ट करना है, कौन से समय में बनाना है, कौन से समय में रखना है, कौन से समय में नष्ट करना है, काल सापेक्ष है किसी भी कार्य के लिए, कार्य काल निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। देश सापेक्ष है, देश निरपेक्ष कोई कार्य नहीं हो सकता। वस्तु सापेक्ष है, उपादान कारण निमित्त कारण अलग अलग हुए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और तुम इन सब की अपेक्षा रखे बिना अकेला ईश्वर सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य अकेला ईश्वर साधन निरपेक्ष जगत को उत्पन्न करके दिखाता है, ये हमको समझ में नहीं आती। ऐसा वो लोग पूर्व पक्ष लोग कहते हैं। और इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन है, दो वस्तु को नित्य मानता है। न्याय दर्शन तो पांच छह वस्तु को नित्य मानते हैं और सांख्य दर्शन दो वस्तु को नित्य मानता है, प्रधान और पुरुष, ये हमेशा नित्य रहेंगे। प्रधान त्रिगुणात्मिका है, विकारी है, परिणामी है। साम्यावस्था में प्रधान प्रधान के रूप में, प्रकृति प्रकृति के रूप में रहती है, कोई जगत प्रतीत नहीं होता। और पुरुष सृष्टि जब तक नहीं रहता तब तक पुरुष असंग रहता है, प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं रखता है, असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है। पुरुष जब असंग निर्लिप्त रहता है और प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है तो दोनों अलग अलग रहते हैं। जब प्रकृति पुरुष के सान्निध्य में पहुंचती है तो पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करते ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। चेतन पुरुष के सान्निध्य में रहते ही जड़ प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। पुरुष को वे लोग असंग मानते हैं और चैतन्य मानते हैं। प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानते हैं और जड़ मानते हैं, पुरुष निमित्त कारण मानते हैं और प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं। पुरुष जगत उत्पत्ति में केवल उसका सान्निध्य निमित्त है और कोई निमित्त नहीं है। प्रकृति के सान्निध्य और पुरुष, पुरुष का सान्निध्य प्रकृति, दोनों के सान्निध्य से प्रकृति में क्षोभ यानी विकार आता है, तो पहला परिणाम प्रकृति का महत्तत्व हो जाता है और उस महत्तत्व में फिर पुनः विकार आ जाता है, तब तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न होता है। वो प्रकृति से ही महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार तीन भेद वाले हैं क्योंकि प्रकृति तीन गुण वाली है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य रूप जो अहंकार है वो अभी तीन भेद तीन गुण वाली है। और सात्विक अहंकार सत्वगुण के चलते सात्विक अहंकार, रजोगुण के चलते राजसिक अहंकार, तमोगुण के चलते तामसिक अहंकार। उसी पुरुष के चैतन्य पुरुष के सान्निध्य को प्राप्त करके प्रकृति ये त्रिविध अहंकार को उत्पन्न करती है और यही त्रिविध अहंकार के द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है। ये वेद न्याय मान वैशिष मान सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन की प्रक्रिया है। तो कम से कम सृष्टि के आरंभ में दो वस्तु होनी चाहिए, पुरुष यानी चैतन्य निमित्त कारण, प्रकृति यानी जड़ उपादान कारण। उस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले व्याख्या में इस बात का संकेत किया, माया प्रधानम अव्यक्तम अविद्या ज्ञानम अक्षरम अव्याकृतं च प्रकृति तमयित्यभिधीयते। एक ही प्रकृति का अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग नाम दिया है, उसी प्रकृति को वेदांती लोग माया कहते हैं, उसी प्रकृति को सांख्य लोग प्रधान कहते हैं, उसी प्रकृति को वैष्णव लोग अव्यक्त कहते हैं, उसी प्रकृति को योग लोग पतंजलि योग दर्शन अविद्या कहते हैं, उसी प्रकृति को अन्य लोग अज्ञान कहते हैं और उसी प्रकृति को कुछ लोग अक्षर कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं और कहीं कहीं उसको प्रधान और किसी को माया इति कोई तमह कहते हैं। ये केवल पर्यायवाची है, वस्तु एक है, अनेक नामों से उल्लेखित वस्तु एक है। तमह कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, माया कहो, अव्यक्त कहो, अव्याकृत कहो, अविद्या कहो।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunavukkarasu Nayanar. Presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे एक बहुत ही प्रचलित संत की कहानी जिनका नाम है तिरुनावुक्करसर। तिरुमुनई पाड़ी के समीप तिरुवाई मयूर नामक रमणीय क्षेत्र है। यहाँ एक कृषक परिवार में पुगलनार के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया तिलकवती। कुछ वर्षों के बाद इसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुगलनार ने इनका नाम रखा मरणनीकी। मरणनीकी का मतलब है अज्ञान को दूर करने वाला। परिवार धन धान्य से समृद्ध था। इस परिवार में जन्म मरणनीकियार ने विविध प्रकार की कलाओं का ज्ञान अर्जित किया। जन कल्याण के कार्यों में इनका इनकी विशेष रुचि थी। तालाब खुदवाना, सड़कें बनवाना, पथिकों को पानी पिलाना आदि में इन्हें आनंद मिलता था। पर न जाने क्यों इनका मन अशांत रहता था। उनकी बहन तिलकवती की सगाई जिस व्यक्ति से हुई थी वह एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तिलकवती ने आजीवन वैधव्य का व्रत स्वीकार किया। कुछ समय बाद भाई बहन के सिर से माता पिता का की छाया भी हट गई। विविध कलाओं के ज्ञान से युक्त होने पर भी मरणी की आर को विचित्र अशांति की अनुभूति होती थी। मानसिक अशांति के कारण वे जैन धर्म से जुड़ गए और उसी में दीक्षा प्राप्त की। कई वर्षों तक इस मार्ग पर अग्रसर रहे। छोटे भाई की इस गति से दुखी तिलकवती भगवान शिव से इनकी शिकायत करती और मंदिर की सेवा में पूरी तरह मग्न रहती। यह बता दूं कि उस जमाने में शैव भक्ति को दक्षिण भारत में काफी स्थान मिला था और जब मरणिकिया ने पारंपरिक या पारिवारिक शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म में जाने का निश्चय किया तो उनके परिवार वाले सगे संबंधे और उनकी बहन काफी दुखित हुई। एक बार मरणिकिया असहनीय पेट दर्द से पीड़ित हुए। सभी प्रकार के उपचारों के उपरांत भी उनकी पीड़ा ठीक नहीं हुई। वे अपनी बहन के शरण में पहुंच गए। बहन तिलकवती ने उनकी देखभाल की और भगवान शिव की विभूत लाकर उनके पेट में रगड़ दिया। इसके कुछ ही क्षण बाद उनका रोग पूरी तरह मुक्त हो गया और वे पुनः स्वस्थ हो गए। मरणिकिया ने भगवान शिव की आराधना व फिर से शुरू कर दी और उन्होंने वापस शैव धर्म को अपना लिया। इनका वाणी पर अद्भुत अधिकार था, इसीलिए इन्हें तिरुनामक अरसर कहा गया है। तिरुनामक अरसर का मतलब है जिनके जीवा पर विशेष आदेश है। जैन धर्म का परित्याग करने के अपराध में जैन धर्मानुयायियों, जैन धर्म का परित्याग करने के अपराध में जैन धर्मानुयायियों ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मा प्रथम के से तिरुनावकरसर की शिकायत कर दी। उस राजा ने तिरुनावकरसर को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। इन्हें चने की भट्टी में डाल दिया, विष पिलाया गया, मदमक हाथी से कुचल कर मारने का प्रयास किया गया, कमर पर भारी शिला बंधवा कर समुद्र में फेंका गया, पर भगवान शिव की कृपा से तिरुनावकरसर का बाल भी भांका नहीं हुआ। सच्चे हृदय से ही वे निष्ठावान थे और उनकी प्रार्थना से शिव काफी प्रसन्न थे। जिस प्रकार प्रहलाद को हिरण्यकशिप ने मारने का प्रयास किया, उसी तरह इस राजा ने तिरुनावकरसर को काफी यातनाएं दी, पर भगवान शिव की कृपा से उन्हें जरा भी हानि नहीं पहुंची। तिरुनावकरसर सदा एक लंबी खुरपी अपने कंधे पर रखते थे। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक मंदिर में परिसर से गुजरते हुए वे घास छीलकर सफाई करते थे। ये सेवा उन्हें विशेष प्रिय थी। तिरुज्ञान संबंधित की भांति तिरुनावकरसर ने अनेक शिव मंदिरों की यात्रा की और प्रत्येक मंदिर में शिवजी की रमणीय शब्दों से स्तुति की। जब एक कहानी बता दूं, एक दिन ये गांव में पहुंचे जहां एक ब्राह्मण ने इनका खूब आदर सत्कार किया। उसी समय ब्राह्मण का पुत्र सर्पदंश के कारण मृत हो गया। तिरुनावकरसर ने भगवान की स्तुति करके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उसी समय एक दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया। तभी तिरुनावकरसर और तिरुज्ञान संबंधर ने मिलकर दो मठ खोले और जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक अन्नदान का पूरा प्रबंध किया। उनकी सेवा का यह सामाजिक पक्ष है। पल्लयारे वडदली नामक स्थान में कुछ विधर्मियों ने एक शिवलिंग छिपा दिया था। तिरुनावकरसर ने वहां जाकर घोषणा कर दी कि जब तक शिवलिंग के दर्शन नहीं मिलेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस देश में सबसे पहले निराहार सत्याग्रह का मार्ग इन्होंने ही दिखाया है। उसके बाद उन विधर्मियों ने वापस शिवलिंग को वहीं रख दिया जहां पर उनका स्थान था। फिर तिरुनावकरसर ने कैलाश जाने का मन कर लिया। बर्फीले प्रदेश में उनके घमंडियों में रक्त प्रवाह रुक जाने के बाद के साथ उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वे धरती पर गिर पड़े। फिर भी कैलाश यात्रा का निश्चय नहीं छोड़ा और गिरते पड़ते कैलाश मार्ग पर अग्रसर होते गए। शिव एक शैव संत के रूप में प्रकट हुए। उन्हें पुनः पुनः समझाया कि मानव शरीर के साथ कैलाश पहुंच कर शिव का दर्शन कर पाना असंभव है, अतः लौटना ही श्रेयस्कर है। इनका उत्तर था कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन मरने वाला है, तो क्यों ना अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास किया जाए। शरीर के विनिष्ट होने तक आखिरी सांस तक प्रयत्न करता ही रहूंगा अपने शिव मोर तक पहुंचने की। इस प्रकार देश के प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव इन्हें ही मिला। भगवान की अद्भुत कृपा देखिए कि उनके आदेश पर निकट के एक सरोवर में जाकर तिरुनावाकर ने स्नान किया। जब डुबकी लेकर उठे तो स्वयं को दक्षिण के तिरुवायुर में पाया। कैलाश में शिव के दर्शन उन्हें यही हो गए, इसका उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। अनेक स्थलों पर जाकर स्तुति गाने के बाद तिरुनावाकर तिरुकुंकुगलूर नामक स्थान में भगवान में लीन हो गए। दास भक्ति के मार्ग के श्रेष्ठ पथिक एक दृढ़ साधक मन वचन और कर्म से पूर्णतः अपने शिव के रूप में लीन तिरुनावाकर का एक प्रसिद्ध नाम अपर भी है। तिरु ज्ञान संबंधर द्वारा उनको अपर नाम से संबोधन करने के बाद उनका यह नाम अपर अधिक प्रसिद्ध है। अपर का मतलब है पिता। वे पिता समान सबकी मनोकामना करते थे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
0: आपको भोजन में सबसे बढ़िया असना, असना माने भोजन, आपका भोजन आपको बड़ा प्रिय लगने वाला भोजन असना आहार, उसके लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, वो हमारी बस की बात नहीं है, है कि नहीं बोलो। समुद्र मंथन किए बिना शिवजी के लिए प्रिय भोजन आप तैयार कर पाओगे? हैं? बड़े खुशी से पान करते हो? हाँ, भगवान शिव बड़े प्रेम से बड़े खुशी से विष पान करते हैं ना, तो समुद्र मंथन से क्या निकला विष जहर, अब वो आपको बहुत अच्छा लगता है। और समुद्र मंथन करने की क्षमता मुझ में नहीं है तो मैं आपकी पूजा कैसे करूं महाराज? देवताओं और असुरों ने जैसे पूजा की ऐसे पूजा तो मैं तो नहीं कर सकता हूं। जलदि मथन दक्ष नैव, दक्ष माने कुशल समर्थ, जलदि मथन दक्ष नैव, मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं समुद्र मंथन करने में, तो आपके लिए भोजन तैयार मैं कैसे करूंगा? और आपकी सपरिया आपकी पूजा में भोजन पहले चाहिए, भोग लगाना है। और दूसरी है पूजा के अंग में पुष्पहार, फूलों की माला। और आपको सबसे प्रिय मालाओं में सबसे प्रिय है नाग की माला, सर्पमाला, उसके लिए मुझे पाताल में जाना पड़ेगा क्योंकि नागों का लोक है पाताल, और पाताल भेदन किए बिना नाग लाना संभव नहीं है, पाताल भेदन करने की क्षमता मुझ में। जलदि मथन दक्ष नैव पाताल भेदी, न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण। और बढ़िया वस्त्र की आवश्यकता है, पूजा में वस्त्र उपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रार्पण करना पड़ेगा। और आपको वस्त्रों में से दो वस्त्र आपको बड़ा प्रिय है, एक तो दंतित्वक मृग कृत सुंदरांबर धरे दंती, दंती माने हाथी, दंतित्वक माने हाथी की चमड़ा, हाथी का चमड़ा। और हाथी को मारना कोई साधारण खेल है क्या? वनमृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, लुब्ध माने शिकारी, शिकारी। वनमृग माने बाघ, बागंबर, बागंबर चाहिए, मृग चर्म चाहिए, या के और मुझे जंगलों में भटककर इन पशुओं को मारने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं आपके लिए कपड़ा लाऊंगा कहां से? बोलो, हाथी मारने की हिम्मत, एक मच्छर मारने की हिम्मत नहीं है मेरी, और हाथी मारकर वस्त्र लाए मैं, कहां से लाऊं? बाघ, बाघ का तो नाम सुनते ही हमारा दिल हिलने लगता है, और उसको मार के हम वस्त्र ला पाएंगे? नहीं महाराज। और हमको पता है बम्बई में कपड़ा का मार्केट क्या क्या नाम है, भूला है, मुलची जेठा मार्केट, भुलेश्वर क्या क्या स्वर है, कालवा देवी, चलो वहां का कपड़ा लाकर शिवजी को दोगे क्या खुश होंगे? वो नहीं होंगे, उनको तो बढ़िया हाथी के चमड़ा लाकर दोगे ना, वाह क्या कहना। दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्ति मचलाम अन्यस्तु किम कर्म भी, है ना। एक पुस्तक है, वो आप लोगों की बस की बात नहीं है, सुवासित रत्न भंडागारम, संस्कृत के सुवासित श्लोक है, उसमें 1,00,000 श्लोक, एक नहीं दो नहीं, 1,00,000 श्लोक है वो, सुवासित रत्न भंडागार, वो खजाना ही आगार है, आगार है। ऐसे ऐसे सुवासित श्लोक है उसमें, बड़ा विचित्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो प्रसंग। एक समय की बात है, महाप्रलय हो चुका था, भगवान विष्णु पालन करना तो था नहीं, महाप्रलय हो चुका था, इसलिए भगवान विष्णु का कोई काम था नहीं, तो विष्णु का उस समय वैकेशन चल रहा था, तो वैकेशन पीरियड में अपने पत्नी के साथ वैकुंठ में, भूदेवी श्रीदेवी के साथ वैकुंठ में बैठे हुए थे, क्योंकि संसार में एक भी प्राणी बचा नहीं था, प्रारब्ध भोगने के लिए एक भी प्राणी था नहीं, सब महाप्रलय में लीन हो गए थे। तो भगवान विष्णु रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, पालन करने के लिए कोई प्राणी नहीं था, तो वैकेशन हो गए, छुट्टी। अब क्योंकि संहार हो चुका था, इसलिए अब शिव जी को भी काम था नहीं, उनका भी वैकेशन ही चल रहा था, वो तो कैलाश में थे। भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस समय छुट्टी का समय है, फुर्सत का समय है, जरा जाते हैं कैलाश में, भोले बाबा से मिलके आ जाते हैं। तो वैकुंठ से वह अपने गरुड़ में चढ़े और कैलाश आ गए। विद्वानों की एक मान्यता है, वो अनभ्यास विषम विद्या, कोई भी विद्या हो वो अभ्यास से ही फलीभूत होता है, यदि तुमने अभ्यास नहीं की तो वह जहर का काम कर जाएगा वो विद्या, अनभ्यास विषम विद्या। अजीर्णे भोजनम विषम, पेट में जाने के बाद वो भोजन परिपक्व हुआ नहीं, पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, वो जहर का काम करेगा। वृद्धम सवा दरिद्रस्य, विद्वानों के सवा में कोई दरिद्र पुगा पहुंच गया तो वो, और चौथी लाइन हम नहीं बोलेंगे, वो बोलने लायक नहीं है। वृद्धस्य तरुणी विषम, नीतिकार का वाक्य, ये सुभाषित है। तो इसलिए भगवान इस बात को जानते थे, विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। महाप्रलय में तांडव नृत्य के बिना जगत का संहार नहीं हो सकता है, और फुर्सत हो गया करके उसका अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। तो भगवान शिव तो अंदर गुफा के अंदर दिगंबर होकर अपनी विद्या का अभ्यास कर ही रहे थे, और बाहर दरवाजे में नंदी को रख दिया, बेटा कोई आना नहीं देना। उसी समय में विष्णु आ गए, कहा कि मैं बैकुंठ से विष्णु आया हूं, शिवजी से मिलना है। बोले वो तो विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तांडव नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। बोले जाकर कह दो ना विष्णु जी हम आए बैकुंठ से। बोले ठीक है, हम कह देंगे। नंदी ने कहा शिवजी को, महाराज भगवान वैकुंठ से विष्णु आए हैं। तुरंत भगवान शिव ने नाचना बंद कर दिया, अभ्यास बंद कर दिया, और दंती त्वक था वहीं, हाथी की जो चमड़ा था उसको पैर से कमर में लपेट ली, तो एक सर्प को उठाया उसको बांधा कमर में। आप लोग पॉइंट पहनने के बाद बेल्ट लगाते हो ना, उसका चमड़ी को बांधा और सर्प से कस के रख दिया, और क्योंकि नाचते समय में जटा खोला था, एक सर्प उठाया, आप लोग रबड़ बैंड बांधते हो ना, फाड़ से उसको सर्प से बांध दिया, और थोड़ा सा राख था वो लपेट लिया, पाउडर लगाते हो ना आप लोग, पूरी मेकअप फटाफट पाउडर लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, और गले में सरगपि निरकरोटी परिकरा और सर्प का माला, मनुष्यों के खोपड़ी की माला, फटाफट तैयार करके बाहर निकले, और वहीं पर भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ था उसने देख लिया, किसको, नागों को, शिवजी के जटा में, गले में, कमर में, जहां भी सब सर्प ही सर्प, नाग ही नाग। जब गरुड़ ने देखा तो सर्पों की तो हवा गुल, डर के मारे कायल हो गए, अब क्या करें, इसने देख लिया अब तो हमको तो खाएगा, वो जिंदा खाएगा, मार डालेगा। तो गरुड़ ने जब एक सर्प को झपट मारने की कोशिश की, सिर में था जो सर्प, उसने गरुड़ ने झपट मारने से पहले ही यहां जो चंद्रमा लगाया था उस पर फण मार ली, किसने, सर्प ने, क्या सोचकर ये मुझे मारेगा, इसके मारने से पहले मैं अमृत पान करूं तो मैं मर ही नहीं सकता हूं, चंद्रमा तो अमृत, फण से फण मारा, अमृत पान कर ली। उस झटके से चंद्रमा में से अमृत टपक पड़ा, कहां तो जो माला थी शिवजी के गले में मरे हुए खोपड़ियों का, उसमें पड़ा तो सब जिंदे होकर नाचते हुए हंसते हुए चल पड़े वो, क्यों, अमृत का स्पर्श हो गया, यहां तक तो ठीक था। वो जो अमृत टपक गया कहां कि वो जो हाथी का छाला चमड़ा उसमें गिर गया, एक बूंद यहां से फट गिर गया, तो सर्प तो पहले भाग चुका था गरुड़ से डर के मारे, और वो चंद्रमा का अमृत उस हाथी के चमड़ी में गिरा तो हाथी तो जिंदा हो गया, वो तो गया घास चरने। भगवान शिव को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। दिगंबर आहा गए मस्ती से विष्णु से हाथ मिलाने, महाराज आपने कष्ट किया, हमको ही बुला लिया होता, वैकुंठ आप वहां से यहां आए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुरा के हंसने लगे, हे भोले बाबा ये क्या किया आपने, कम से कम कपड़ा तो पहन लिया होता, ये नंगे धड़ंगे क्या है, इतना भी क्या हतार थी, क्या जल्दीबाजी थी, हम प्रतीक्षा करते कपड़े कपड़े पहन के आते आराम से। बोले नहीं नहीं कपड़ा पहन के आया हूं। अरे देख लो कपड़ा है कि नहीं, देखा तो हाथी तो वहां गया, वहां चल रहा, ये क्या हो गया। तो भगवान शिव को बड़ा लज्जा आई विष्णु के सामने दिगंबर होकर खड़े होने में, और संकोच के मारे गुफा के अंदर फिर भाग गए। तो ऐसे जो भगवान शिव है हम सबका कल्याण करे। कवि ने ऐसा सुवासित कविता लिखी है। भावना ही तो है, भोले है ना वो बेचारा, उनको पता ही नहीं है। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल भेदी न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण असन। भोजन के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है, समुद्र मंथन किए बिना आपके लिए प्रिय भोजन लाना संभव नहीं, समुद्र मंथन हम नहीं कर सकते। और माला के लिए पाताल भेदन करना पड़ेगा, पाताल जाकर नागों को उठाकर लाना पड़ेगा, तभी आपके लिए माला बढ़िया बन सकता है, और पाताल जाने की क्षमता हमारे में नहीं है। वस्त्र बढ़िया वस्त्र के लिए वन में मृगया शिकार खेलने के लिए जाना पड़ेगा, हाथी को मारना होगा, शेर को मारना होगा, बागम्बर या दंती त्वक लाना पड़ेगा, तभी आपको वस्त्र का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, वो भी हमारे से संभव नहीं है। कथम सपर्याम विधेयम कथया, आप कहिए कि आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूं। तो फिर तो क्या कहना चाहता है महाराज, बोले एक काम मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर सकता हूं और हृदय रूपी घर आपके लिए अर्पण कर सकता हूं, तो आप हृदय रूपी घर में निवास करें और बुद्धि रूपी कन्या से खूब सेवा लें, इसके अलावा और तो मैं कर नहीं सकता हूं महाराज। अब कदाचित आपकी कृपा से पूजा द्रव्य आदि मैं लाऊं भी, तो भी फिर आपकी पूजा मैं करूं कैसे। 86वां श्लोक। पूजा द्रव्य समृद्धयो विरचिता पूजां कथम कुर्महे। मान लो कि पूजा के सारे सामग्रियों को मैं विरचित यानी सब तैयार करूं भी, उपलब्ध हों भी, तो मैं पूजा करूं कैसे आपकी, क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले आवाहन करना पड़ता है और आप सब जगह व्यापक हैं, तो आपके आवाहन कैसे करें, आवाहन मंत्रों का कोई प्रयोग ही नहीं है। दूसरी बात, आवाहन के बाद आसनम, तीसरे नंबर में पादयो पाद्यम समर्पयामि, पांव धोना पड़ेगा, और पांव आपका पांव कहां है कहां पता ही नहीं है, तो मैं पाद्य बना के रखूं तो भी वह आपका चरण कहां है, पहले चरण का पता तो चले, आज तक आपके चरण कहां है अब किसी को पता ही नहीं,
5: चरण पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पाताल गए तो भी आपका चरण नहीं मिला, तो उनको चरण नहीं मिला तो फिर मैं आपको चरण में पादयो पाद्यम समर्पयामि कैसे करूंगा। मैं पूजा द्रव्य बना भी लूं तो चरण का पता चले तब न चरण में अर्घ चढ़ाए पाद्य चढ़ाए। बोलो कथम कूर्म है पूजाम, आपकी पूजा मैं करूं कैसे। पक्षित्वम चवा किटित्वम अपिवा, और दूसरी बात पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, आपका हाथ का पता चले तब न फिर अर्घ चढ़ाए। निर्विशेष का हाथ कहां है और अर्घ कहां चढ़ाए बोलो। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, मुख में आचमनीय जल देना चाहिए। पहले तो सिर का पता चले मुख का पता चले तब ना आचमन अर्पण करें। सिर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण करके ऊपर गए, ब्रह्मा ने सिर का पता नहीं लगाया। चरण के पता लगाने के लिए विष्णु कीड़ बनकर वराह रूप धारण करके पाताल में गए, चरण का उनको ही पता नहीं चला। पक्षित्वम च वा कीटत्वमपि न प्राप्तम मया दुर्लभम। विष्णु और ब्रह्मा को दुर्लभ हो गया आपका, विष्णु को चरण दुर्लभ हुआ, शिव को मुख दुर्लभ हुआ, तो पाद्य कैसे अर्पण करें, आचमनीयम कहां अर्पण करें बोलो। जाने मस्तक मंग्री पल्लव मुमा जाने, हाँ न जाने, पक्षित्व धारण करके ऊपर जाने पर भी ब्रह्मा जी ने मस्तकम न जाने, और कीटत्व धारण करके विष्णु पाताल में जाने पर भी अंग्री पल्लवम न जाने, चरण का पता नहीं लग पाए। जब उन लोगों को पता नहीं चला तो अहम विभो ते अहम न जाने, तब मैं मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं कैसे पूजा करूं आपकी। न ज्ञातम ही पिता महे न हरिणा तत्तेन रुतद्रूपिणा, जब उन लोगों के द्वारा ही आपका स्वरूप का पता नहीं चला है, मान लो पाताल से मैं सर्प लाऊं भी तो आपका गला पता चले तब न माला पहनो। मान लो मैं जंगल से हाथी के चमड़ा लाऊं भी तो आपका मध्य देश कटी देश पता चले तो मैं वस्त्र पहनाऊं। मान लो कि मैं गंगा का जल ले आऊं तो आपका चरण का पता चले तो धोऊं। मान लो कि मैं मलयाचल का चंदन लेके आऊं तो आपका ललाट का पता चले तब चंदन अर्पण करूं, अक्षता अर्पण करूं। निर्गुणस्य कुतो पूजा, निर्गुण निराकार की मैं पूजा करूं कैसे करूं। इसलिए हे महाराज एक ही चीज मैं कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर देता हूं और हृदय रूपी घर आपको लिए अर्पण कर देता हूं, खाली कर देता हूं। आपको कदाचित लगता है कि वह हृदय छोटा है, इतना साफ सुथरा नहीं है, तो वहां उस हृदय में जो मेरी अनात्म वासना है संसार वासना है वो कचरा है, वो सफाई कर कहोगे तो मैं सफाई कर सकता हूं, साफ सुथरा करके वो कमरा इतना बढ़िया बनाकर रख दूंगा कि आप आओ बैठो और मेरी बुद्धि कन्या को सेवा करने का मौका दो। कल के श्लोक में कहा था कि आप पहाड़ों में विचरण करते हो, यमराज को आपने लात मारी थी तो आपका चरण बहुत दुख रहा होगा, तो मुझे हाथों से संवाहन करने का अवसर दो। अब आप कहते हैं चरण का ही पता नहीं है।
6: लेव जी,

0: आत्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

श्री पुष्पद दंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सिर्फ अपनी ही महिमा का ख्याल नहीं रखते, आप तो महिमावान है ही। जैसे सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, महिमावान है, प्रकाश है, तेज है, अपना सौंदर्य है, पर अपने ही सौंदर्य की सिर्फ सूर्य देवता चिंता नहीं करते। क्या करते हैं? पूरा हमारा जो ऋतु चक्र है वो चलाते हैं। वो कहीं और अंतरिक्ष में चले जाते तो उनको तो किसी की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके बैठ सकते थे। हमारे ही अंतरिक्ष में क्यों आए? क्योंकि हमेशा परमात्मा देव है, वो परोपकारी होते हैं। हे शिव जी, आपका इतना महिमा है, आप प्रचंड है, उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है, स्वयं परमात्मा है, पर आपका महिमा आप तक ही सीमित नहीं है। आपके शरणागत जो कोई भी भक्त है, आपका एक बार भी स्मरण किया, नाम किया, उच्चारण लिया, तो ऐसे सद्भाव वाले भक्तों की आप रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है, उनकी रक्षा शिव जी ने किस प्रकार की लीला करके की, उसका वर्णन किया है। यानी हमसे कोई पाप हो, दुराचरण हो, गलती हो, रजस और तमस गुण से किए गए कोई भी कर्म हो, प्रमाद हो, ये आत्मविद्या ग्रहण करने में कभी प्रमाद हो जाए, तो इन सब जो चीजें हैं उससे बचाने के लिए भी शिव रूपी गुरु और गुरु रूपी शिव जो है वो हमेशा प्रवृत्त होते हैं। तो यहां किस प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को तारने का प्रयत्न किया है वो हम देखेंगे। प्रजानाथम नाथ, आप कैसे हैं? देखिए, अब उद्बोधन है वो बदल गया। भगवद गीता में ये देखने को मिलता है बहुत बहुत सुंदरता से। हे पार्थ, कभी प्रोत्साहन करना है तो कुछ अलग बात करते हैं, महारथी कह देते हैं, महाभागो। कभी अर्जुन कह देते हैं कि यू आर जस्ट अर्जुन, ये शरीर मन बुद्धि का संगात है, मेरी कृपा से चल रहा है, याद रखो। तो उद्बोधन, तो यहां क्या कहा कि प्रजानाथम, आप सिर्फ नाथ नहीं है, प्रजा के भी उद्धार करने वाले प्रजानाथ है। यहां जो आख्याय

का दी गई है, ये जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार का वर्णन है कि ब्रह्मा जी की एक संध्या नामक पुत्री, पुत्री तो उत्पन्न हो गई, अब ब्रह्मा जी का क्या है, ऐसी गलती क्यों हो जाती है, क्योंकि उत्पत्ति का भार उनके हाथ में है, तो उत्पत्ति जितनी भी उनसे उत्पत्ति हुई वो सब उनकी हो गई ना, अभी उत्पत्ति हुई तो वो क्या हो गए, वो उसके आदन पिता ही हो गए, माँ ही हो गए वो चीज के, अब सब कुछ ही वो व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है तो वो करे भी क्या, तो संध्या नामक पुत्री भी उत्पन्न हो गई तो उनसे उनको आसक्ति हो गई, हाँ उनसे थोड़े आकर्षित हो गए। अब परमात्मा को तो पता है कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर दी मदर और फादर ऑफ दैट क्रिएशन। संध्या नामक पुत्री से कामवश होके ब्रह्मा जी जब तत्पर हुए उन्हें पाने के लिए, तो उन्होंने डर से और अपने पिता को बचाने के लिए भी, क्योंकि ये जो कार्य है उससे मेरे पिता का नाम बिगड़ सकता है, बदनामी हो सकती है, तो ब्रह्मा जी को बचाने के लिए हरिणी का रूप ले लिया, मृग जो है मृग का रूप ले लिया संध्या ने और दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने उसे पाने के लिए खुद मृग का रूप ले लिया और दौड़ने लगे। अब पुत्री ने तो बचाने का प्रयत्न किया पर उसमें वो असफल रही। अब कौन आता है, तो अब शिव जी आते हैं कि ये तो मेरा शिष्य है, मेरी ही उत्पत्ति से मुझमें से ही वो उत्पन्न हुए हैं, और यही जब प्रजा के जो भी रीत रिवाज है उसी का उल्लंघन ये ब्रह्मा जी ही करने लगे तो प्रजा को मैं कैसे बचा पाऊंगा। तो शिव जी ने एक धनुष जो है वो धनुष का प्रयोग करके उनके ऊपर उनका प्रहार करने चले। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से बचने के लिए क्या किया, वो आकाश में चले गए, उन्होंने मृग से रूप बदल लिया, नक्षत्र का रूप कर लिया, तारों का रूप कर लिया, और वो मृग शीर्ष नक्षत्र बन गए। देखिए आप नक्षत्र देखेंगे, कोई ऐसी विद्या जानते होंगे आप नक्षत्रों की, तो मृग शीर्ष उसका मुख मृग जैसा है, मृग के शीर्ष जैसा है, ऐसा नक्षत्र बन गए। तो शिवजी ने क्या कहा, शिवजी ने अपना बाण जो है वो भी नक्षत्र, अभी ब्रह्मा जी नक्षत्र बन सकते तो शिवजी के लिए क्या इम्पॉसिबल है। हाँ हम क्या करते हैं, हम मुखौटा पहन के आते हैं, ये शिव जैसे गुरुओं के पास मुखौटा पहन के आते हैं, इनको क्या पता लगेगा हम क्या है कौन है। हा? अभी कैसे पता नहीं लगेगा, ये सोचने की बात है, जैसे है ऐसे उपस्थित हो जाएंगे तो गुरु को थोड़ा कष्ट कम पड़ेगा, नहीं तो उनको भी आपके जैसे बहु रुपया बनने में देर नहीं लगती है। हाँ वो भी बहुत सारे मुखौटा रखते हैं, जैसे हम वैसे वो मुखौटा पहन लेते हैं, हमने निकाल दिया तो वो भी निकाल देंगे। हाँ और अपना जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है वो दिखा देंगे, पर क्यों गुरु का ब्रह्म स्वरूप नहीं दिखता है, जितने मुखौटे हमने पहने हैं उतने सामने आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो शिवजी क्या बन जाते हैं, शिवजी आर्द्रा नक्षत्र है, तो आर्द्रा नक्षत्र है ना वो तीर के समान है, तो अभी तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, यानी क्यों अभी तक नहीं छोड़ते हैं, ये चीज जो है, ये जो काम है, ये जो तत्परता है विषयों, ये क्या बता रहे हैं भाई, विषयों के प्रति तत्परता बता रहे हैं, विषयों के प्रति आकर्षण जो है वो अलग बात है, विषयों का विचार अलग बात है, क्यों, क्योंकि वो आपकी कामना के अनुसार प्रारब्ध के फल के अनुसार आते जाते रहेंगे विचार, पर उसमें जो हम पागल हो जाते हैं, तत्परता जो हो जाती है, तत्परता निकाल डालने के लिए और हमेशा के लिए, ये नक्षत्र तो हमेशा के लिए ऊपर आ गए, ब्रह्मा जी ने तो शरणागत भी हो गए, माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, पर शिव जी कहते हैं कि ये देख के आपके बाद वाली आपकी जो प्रजा है, हम सब ब्रह्मा जी है, क्यों, क्योंकि उनकी ही प्रजा है तो उन्हीं के गुण आ गए, तो भाई जो पिता में गुण है वो पुत्र में होते ही है, मैनिफेस्ट हो या न हो वो अलग बात है पर होते तो है ही, तो इस डर से कि कहीं आपकी प्रजा भी इस प्रकार ये जो मर्यादा है सीमा है उसका उल्लंघन न करे, इसीलिए ये तीर बनके मैं दिखता ही रहूंगा नक्षत्र के रूप में, क्यों, क्योंकि हम सतर्क हो जाए, तुरंत ये बात सुनी है तो याद आ जाए कि हाँ भाई ये ब्रह्मा जी के पीछे तीर लेके कृष्ण शिव परमात्मा है, तो मैं भी जब कामनातुर, मैं भी जब वासना से उद्धृत हो जाऊंगा
और वासना के पीछे जब मैं दौड़ूंगा तब याद रखना शिवजी रूपी। देखिए वासना के पीछे दौड़ना बुरा नहीं है, एक गुरु करना जो शिवजी जैसा हो, जो आपके पीछे दौड़े और आपको रुकवा दे। वासना के पीछे मैं न दौड़ूं ऐसी आइडियल सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। आप कोई हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाएंगे तो भी मन तो दौड़ेगा ही, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, एक शिव जैसे गुरु के पास उपसन्न हो जाना है। कोई ऐसे व्यक्ति तो जीवन में रखना जो हमारे पीछे दौड़ सके तीर लेके, हाँ तो ही उद्धार का कारण बनेगा। ऐसे पुष्पदंत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी क्षमा करने वाले, ब्रह्मा जी का भी इतना ख्याल रखने वाले आप हैं, तो मैं भी आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरा भी ख्याल रखना। हे गुरु, गुरु के पास उपसन्न होते वक्त इतना ही ख्याल रखना कि हे गुरु मेरी जब कोई भी ऐसी गलती हो तो मेरे पीछे भी बाण बन के आप आना, ऐसी मैं आपको ये अदृश्य प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी का दृष्टांत लेके पुष्पनंद जी ऐसे फिर शिव जी की स्तुति करते हैं। ये स्तुति करने के बाद फिर शिव जी कैसे हैं, भाई जो काम को दूसरे के काम को मार सकता है वो खुद कैसे होते हैं, इतना तो सोचिए ना। हाँ खुद तो निष्काम ही होंगे ना, कामना से पर ही होंगे। हाँ कामना से पर है तो फिर ये पार्वती जी है उनके साथ, और वो भी अर्ध शरीर है, अर्धांगिनी है। पार्वती जी को तो शंकर भगवान ने आधा शरीर में जगह दे दी है, तो ये कैसे हो सकता है, वो कुछ बात बताओ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ श्री पुष्पदंत जी बताते हैं कि देखिए जो काम को मारने वाला होता है वो कामी नहीं होता है, आप उनका बाह्य रूप देख के ऐसी गलतियां मत करना। तो कहते हैं ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि

अब जो पुत्र प्राप्ति की बात हुई थी तारकासुर को मारने के लिए शिव जी के जो पुत्र है वही सक्षम हो सकेंगे ऐसा तय हुआ था। अब ये काम कामदेव जी को ब्रह्मा जी ने सौंपा कि भाई शिव जी कोई जो स्त्री है उसमें प्रवृत्त हुए तो ही पुत्र प्राप्त कर सकेंगे, तो ऐसी स्त्री कौन है? शिव जी के लिए तो उनके ही जैसे गुणों वाली चाहिए। तो बोले पार्वती जी है, उमा है, सती, जो पंचाग्नि तप करके शिव जी की आराधना करके उनको वर की जगह पाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। तो पार्वती जी का जो सौंदर्य है उससे सुंदर कोई भी स्त्री का सौंदर्य इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में नहीं है, ये जान लीजिए। तो कामदेव को लगा कि यहां पार्वती जी है, सर्वांग सुंदर, बाह्य और आंतरिक भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है, अतिशय शुद्ध है। शिवजी के अलावा कोई भी प्रकार की लेश वासना उनके भीतर नहीं है, और उनके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं, ये कामदेव मेरे वाण, तो शिवजी को प्राप्त करने में सरलता है। उनको रिझाने के लिए काफी है इतना कि पार्वती जी और मैं बहुत हो गया। तो कामदेव जी ने अपनी वसंत ऋतु से, सुगंधि से, नृत्य से, गान से, सब तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश की, पर यहां तो भस्म, ये एक तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र सिंबॉलिक है कि काम जो है सब विषयों की आसक्ति काम में ले ली जाती है, तो ये जो काम का भोग है वो मात्र ज्ञानाग्नि से ही जल सकता है और किसी भी तरह नहीं। आप दमन करिए, शमन करिए, सब थोड़ी देर के लिए रहेगा, पर फिर क्या है, वासना जो भीतर है वो उसका दहन करना चाहिए। बीज जो है, देखिए बीज को आप छुपा के रखेंगे, बोतल में बंद करके रखेंगे, कागज में बंद करके रखेंगे, 5 साल के बाद भी जब बोएंगे तब अंकुर तो होगा ही, पर वो बीज को जला दिया तो अब अंकुर फूटने की शक्यता नहीं, बत यानी नहीं है, 100% नहीं है। आप वो बीज के साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं। बीज को जला देना है, जलाने का काम सिर्फ अग्नि ही कर सकती है, इसीलिए ज्ञान को अग्नि से संबोधन किया जाता है। तो यहां कामदेव जी तो शंकर भगवान के संकल्प मात्र से भस्मीभूत हो गए। अब भस्मीभूत तो हो गए, शिव जी को तो पता ही था कि ये मुझे उत्सुक प्रेरित, पुत्र के लिए प्रेरित करने के लिए ये सब किया है, पर इन सब में ये जो सती जो है, उमा जो है, उनका तो कोई दोष नहीं है, वो तो मेरी भक्त है, शिष्य है, और मुझे पाने के लिए, सिर्फ मुझे पाने, मेरे सिवाय उनके जीवन में और किसी की भी कोई भी कीमत नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, तो उनका तो कोई दोष नहीं है, और उनका दोष नहीं है मेरे विरह में वो तप्त न हो, इसीलिए मैं उन्हें अवैति ताम मध्वा बतमरद मुग्धा युवतयः, क्या करते हैं कि उनका जो विरह है, जो संताप है, विरह यानी उत्सुकता, कौन सी उत्सुकता, भाई शिव को पाने की, यानी मेरे खुद के स्वभाव को पाने की उत्सुकता, मेरे स्वभाव को पाने की उत्सुकता है। ये सिंबॉलिक आधा शरीर ही क्यों दिया, शिव तो पूरा भी दे सकते तो भी शिव रहते थे, तो क्या क्यों आधा दिया कि भाई ये वाणी से, ये मन से, ये बुद्धि से, कर्म से, जितना भी आप परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे वो आधी ही रहेगी। तो शिव का आधा भाग जो है वो तो अनुभव ही करना पड़ेगा, वो आंतरिक अपरोक्ष अनुभूति का विषय है। हाँ, तो हमारे जो ये जब प्रयत्न है वो कैसे है, आधे यानी कम है, कुछ कम है, पूरा का पूरा तो हम बताने की चेष्टा करेंगे, हम 100% बताने की चेष्टा करेंगे तो भी आधा का आधा कुछ अनकहा रह जाएगा। ये जो अनकहा रह गया वो शिवजी का दूसरा आधा शरीर है, वो अनुभूति मात्र है, वो अनुभूति से जाना जाता है। तो शिवजी कृपा करते हैं कि मैं पार्वती मेरे विरह को प्राप्त न हो, इसीलिए मैं उन्हें मेरा आधा यानी मेरा जो सगुण रूप है वो मैं बता देता हूं। देखिए परमात्मा के सब शास्त्र में, वेद में परमात्मा के सगुण स्वरूप की चर्चा 100% हुई है, आप किसी भी शास्त्र में देख लीजिए,
हाँ सगुण स्वरूप में कोई हर्ज नहीं है, उसे बराबर आत्मसात कर लिया, जान लिया, प्राप्त कर लिया, तो निर्गुण निराकार बाद में शुरू जो होगा उसमें आप बहुत ही सरलता से जा सकेंगे। ये पूरा थोड़ी सांकेतिक भाषा से, थोड़ी मैच्योरिटी से ये समझने की आवश्यकता है। सिर्फ सगुण ही काफी नहीं है और सिर्फ निर्गुण ही काफी नहीं है, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को, अंतर अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये जानने के लिए सगुण द्वारा परमात्मा के जो रूप है, जो लीला है, जो क्रीड़ाएं हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, भोग रहे हैं, तो उसे जानने की हमारी फर्ज है, हमें वो जानना ही चाहिए। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि मेरे सगुण स्वरूप को भी आप जानने लगे तो मैं आधा जो है वो आपको मिल ही जाऊंगा, मेरा अंग बना के आपको रखूंगा। और जब आप किसी को अपना अंग बना लेते हैं, देखिए ये कपड़ा भी है, जड़ है, उसको जब आप परिधान करते हैं तो वो आपका अंग हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। आप कोई भी सफारी में चले जाइए प्राणियों को देखने के लिए, हाँ, तो आप हाथी के ऊपर सवार होके जाते हैं तो क्यों वो शेर जो है, वो बाघ जो है, वो क्यों आपके ऊपर नहीं आता? हाथी को तो वो नहीं मारते, हाँ, बड़ा प्राणी है, डरते भी है हाथी से, पर आप तो अनजाने हैं, आप तो मनुष्य हैं, आपके ऊपर वो क्यों नहीं आता है वो प्राणी? वो शेर जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर बैठा हुआ जो मनुष्य है वो हाथी का ही एक भाग है, हाथी का ही एक अंग है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी है और ये रिसर्च किया गया है, इसीलिए हाथी के ऊपर बिठा के लिया जाता है, नहीं तो कौन जाता था देखने के लिए? हाँ, टीवी में देख लेना काफी है, कौन खुद की जान लेने को जाता था? पर ये दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, कि ये हाथी का ही एक भाग है महावत और आप सब जो बैठे हुए हैं वो, और इसीलिए हम जिंदा वापस आते हैं वहां से, ये तो कोई शक्यता ही नहीं है। इसी प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है कि जब ये वस्त्र भी आप अंगीकार करते हैं तो ये आप जब तक आप अंगीकार किए हुए हैं आपका ये भाग बन जाता है कि नहीं? बोले हाँ बन जाता है। क्यों बन जाता है? अरे भाई आप रास्ते में चलेंगे, नीचे पानी गिरा है तो कपड़े को उठाते हैं कि नहीं? ये तो जड़ है, इसे क्यों उठाते हैं भाई? हाँ मेरा भाग है अभी तो, ये दिस इज पार्ट ऑफ, ये जड़ वस्त्र भी मेरा भाग है। कोई चाय देगा, पीते पीते कुछ गिर गया, अरे अरे गिर गया, धो धो धो डालो, हाँ दौड़ के फिर क्यों धो डालते हैं भाई? जड़ वस्त्र है, मेरा भाग है, मैंने अंगीकार किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब शिव जी ने आपको स्वीकारा है, अंगीकार कर लिया है, तो आपके ऊपर दाग गिरे तो पोछने की जवाबदारी भी उसकी है, दाग नहीं गिरे वो जवाबदारी भी उसकी है, हाँ वो आपका सब वहन करता है। यही है कृष्ण परमात्मा ने कहा योगक्षेमम वहम्यहम, वो इस प्रकार आप मेरे बन जाइए। हाँ तो एक जड़ कपड़े को भी इतना ध्यान रखा जाता है तो हम पूरे चेतन संघात है, हमारा ध्यान वो क्या गुरु वो परमात्मा नहीं रखेंगे, पर हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये उमा जी, ये पार्वती जी की तरह मात्र शिव, शिव यानी वही ब्रह्म, वही परमात्मा, कोई भी आपका आराध्य देव जो ईश्वर है, आत्मा है, सचराचर व्यापक जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म की मात्र, और इसीलिए यही बात उपनिषद ने कही है तम एव एकम आत्मानम विजानत, ये ऐसे ही नहीं कहा है, वो ही एक ही आत्मा के बारे में एव करके बता दिया कि और कोई भी चीज को प्रायोरिटी नहीं दो, प्रायोरिटी की लिस्ट की ना बोली है यहां, तो फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट परमात्मा को रखा, सेकंड होना ही नहीं चाहिए, ऐसा यहां कहना है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, यम एव एष, उसी को ही प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन्स्वाम, तो ये विवृणुते तनुन्स्वाम, ये अर्धांगी बना दिया, अर्धांग बना दिया। अब आगे कहते हैं, देखिए कल हमने जो बात की थी, ये आडंबर की बात की थी ना हमने, शिव जी का आडंबर क्या किया था? पृथ्वी का रथ बना दिया, पहिए बना दिए, हाँ, तो और दक्ष प्रजापति के बारे में जब वो लग्न के प्रसंग पे गए तब ऐसा रूप था कि दक्ष प्रजापति भी थोड़े हैरान हो गए थे। तो यह कहते हैं कि यही जो परमात्मा का जो रूप है वो रूप की अब चर्चा करते हैं। देखिए परमात्मा
ये निर्गुण निराकार आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव जान लिया तो ही आप सगुण साकार का जो स्वभाव है उसमें तल्लीन तत्पर होके वो परमात्मा मय पूरे के पूरे हो सकते हैं। ये ख्याल कीजिए, पहले जानना है, पहले जो हम जानते हैं वो जिज्ञासा से उत्सुकता से जानते हैं, हाँ हमारी वासनाओं के साथ मिलके वो परमात्मा को जानते हैं, थोड़ा सगुण थोड़ा निर्गुण। पूरा जान लेने के बाद फिर से आप जब सगुण को जानेंगे तब मजा आएगी कि ओहो ये तो मेरा ही वैभव, मैं अन्य प्रकार से देख रहा हूँ, मारो मेरे भीतर जो परमात्मा है, मेरे भीतर जो ब्रह्म है वो कैसा है वो मैं देख रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब निर्गुण निराकार में आप प्रस्थापित हो गए तो तब आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुझे क्या पहनाया जाता है, क्या भोग लगाए जाते हैं, मेरा वैभव है जरा देखने को तो जाऊं। यात्रा का प्रकार, यात्रा की भावनाएं ऐसे बदलती है, पर यू हैव टू बी विद दैट रियालिटी। हाँ ये न के न प्रकार है ना, उसी के साथ संपर्क बना दीजिए परमात्मा को, और कुछ नहीं, उसे अपना प्रिय पात्र प्रिय बना लीजिए तो ही ये हो सकता है। तो यहाँ श्री पुष्पदंत जी इतनी सारी परमात्मा की बातें करते करते उनके प्रेम में इतने आ गए कि उनका जो भी वो बाह्य सौंदर्य है वो भी उन्हें अब उत्सुक और आनंदित करने लगता है, और जब भीतर से आनंद आता है ना तो बांटने का अपने आप मन होता है। तो यह कहते हैं

0: मंगलमसि।
1: बोले कि आपकी क्रीड़ा, आपका आडंबर, आपका मेकअप, वो सब देखकर तो ऐसा ही लगेगा कि ये सब चीजें लोक वाक में तो सब अमंगल है, ऐसा ही लगता है। पर निश्चित ही शिव स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप आप जो है, ज्ञान स्वरूप जो भी जिसने आपका ज्ञान पा लिया, वो जो वो हो गए हैं ऐसे ज्ञानी, वो जो भी कुछ परिधान करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो लगता अगर अमंगल भी लगता हो तो भी वो उनके परिधान करने से उसका जो अमंगलत्व है वो चला जाता है। तो अमंगल भी जिसके संपर्क से मंगल हो जाता है, ऐसे हे परमात्मा मेरा मन भी अमंगल ही है ना। मन में कितनी काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, अभी नहीं है तो पहले होंगे, अभी चित्त शुद्ध हो भी गया होगा। कितने साल तक हम आपको बोलते रहेंगे आप ऐसे हैं ऐसे हैं, अब ऐसे नहीं भी है, हम मान भी लेते हैं नहीं है, आप प्रयत्न कर रहे हैं रोज सुबह आके चित्त शुद्धि का, पर पहले जो हो गए तो अमंगल के थोड़े दाग तो रह गए हैं ना भाई। हाँ, बुद्धि में थोड़ा अहंकार रह गया है, कभी तो किसी का अपमान किया होगा, कभी तो प्रतिष्ठा का अहंकार किया होगा, कभी तो शरीर से किसी को कष्ट दिया होगा। हाँ, तो ये शरीर मन बुद्धि में जो अमंगल बैठ गया है उसका क्या, बोले शिव जी से संपर्क कर लीजिए, वो शिव तत्व, वो गुरु तत्व से संपर्क कर लीजिए तो अमंगल भी मंगल हो जाता है। क्योंकि हम अपने एक एक अमंगल को लेके मंगल को कन्वर्ट करने बैठे ना तो हजारों जन्म कम पड़ेंगे। यहाँ क्या करना है, बस उसी से संपर्क कर लो तो अमंगल भी मंगल हो जाता है। ये कैसा है, जब कैलाश यात्रा मानसरोवर से लोग आते हैं ना, तो क्या है, मानसरोवर का जल लेके आते हैं ना। हाँ, अभी यहाँ कोई जल लेके आया तो इतने हम सबको दो दो बूंद दे सके उतना जल उठा के थोड़ी ले आएंगे, सब पूरी बिरादरी को देना है, सब देना है। और आप जाके आए और मैं आपको बोलूँ कि भाई आप तो मानसरोवर जाके आए, जल लाए हैं, तो बोले हाँ लाए हैं, तो कल ले आना प्रवचन में भाई, हमें सबको देना है। तो बोले ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतने लोगों का जल में उठा के 20 किलो ही अलाउड है, उसमें मैं कैसे, मैं तो इतना ही जल लाया हूँ तो क्या करूंगा। तो बोले कोई चिंता नहीं, आप जितना लाए हैं उसमें से मुझे एक ही चम्मच या दो तीन बूंद, एक बूंद भी दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, हम यहाँ रख देंगे पूरा जल का जो है वो घट रख देंगे, जल से भरा हुआ, और फिर उसमें आपका लाया हुआ एक बूंद भी डाल दिया तो पूरा जल क्या हो गया, पूरा जल मानसरोवर हो जाता है। बस इसी प्रकार ये पूरा जो हमारा ये शरीर मन बुद्धि का संगात है, पूरा जल है वो अमंगल हुआ हुआ है, कलुषित हुआ है, दोषित है, तो क्या करना है, सिर्फ एक शिव, एक संपर्क, एक गुरु का, कोई संत का, ज्ञानी जनों का सानिध्य कर लिया, संपर्क कर लिया, संपर्क यानी उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मसात करने की थोड़ी चेष्टा भी की तो अमंगल तुरंत ही मंगल हो जाता है। जैसे आपके यहाँ के पानी जो है वो अभी के अभी इसी क्षण मानस का जल बन सकता है, इसी प्रकार। तो यहाँ ये परमात्मा कैसे है वो देखिए, रहते कहाँ है भाई, आपका शौक कहाँ है, आप रहते कहाँ है, तो बोले स्मशानेश्वा क्रीड़ा। हाँ, स्मशान में रहने वाले हैं। स्मशान में क्या है, स्मशान में कोई भी प्रकार की आसक्ति को रहने की जगह नहीं है। स्मशान में कोई भी, आप स्मशान में जाएंगे तो कोई भी प्रकार के विषय का चिंतन हो सकेगा क्या? हाँ, विषय का चिंतन नहीं होता है। क्या होता है, किसका स्मरण आता है, मात्र परमात्मा का ही स्मरण आता है, कोई भी विषय का चिंतन वहाँ नहीं होता। यानी आपके घूमने फिर क्रीड़ा का स्थल क्या है, तो बोले जहाँ विषय नहीं है वहाँ आप है, जहाँ प्रलोभन नहीं है वहाँ आप है, जहाँ लौकिक सांसारिक बातें नहीं है वहाँ आप है। अब स्मशान से इसी जगह में जाके आप सांसारिक बातें करेंगे तो कोई बाजू वाला है वो भी आपको रोकेगा कि अभी इधर क्या है, ये बात कर रहे हो, बाहर निकल के, अभी इधर नहीं। तो सांसारिक बात से परे है, यहाँ भी आते हैं सत्संग में भी आते हैं तो सांसारिक बातों से दूर रहना है। हाँ, ये सीखना है स्मशानेश्वा क्रीड़ा। और आपके साथ कौन कौन है, तो बोले भूत और प्रेत, भूत और पिशाच जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। यानी ये परमात्मा भूत और पिशाच के साथ क्यों रह रहे हैं, जरा सोचिए। एक बात तो कई बातें निकलती है अगर विचार करने बैठे तो, पर एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ज्ञानी जन है, गुरु जन है, उनके साथ रहने वाले अगर कोई भूत या पिशाच जैसे हो, भूत या पिशाच यानी क्या कि आपको ऐसा लगे कि ये ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा भी हो, तो अगर वो ज्ञानी जनों के साथ घूम फिर रहा है तो उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हाँ उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, भूत हो या पिशाच जैसा हो, क्योंकि शिव ने उसका स्वीकार किया है, शिव ने उसको अपना मित्र बनाया है, फ्रेंड्स बनाया है, तो कैसे हो सकता है। दूसरा कि अगर हम भूत और पिशाच जैसे भी हो, सबसे भूत भूत किसको अच्छा लगेगा, मैं दो तीन भूत है आपको मुझे लगा देना है तो आप कौन कौन वॉलंटियर बनते हैं, हाँ सात दिन में मैं कुछ तो मांग सकती हूँ ना आपसे, हाँ दो तीन भूत है मैं लगाना चाहती हूँ आपसे, कौन कौन वॉलंटियर बनेगा, हाँ बोले नहीं वो नहीं होगा, आप कहे वो सब कुछ कर देंगे पर ये चिपकने वाली, भूत को चिपकाने वाली बात नहीं करना, ये बात ये शिव ही ये हिम्मत कर सकते हैं। अरे शरीर मन बुद्धि के अच्छे संगात वाले श्रेष्ठियों को तो सब जान दिल से लगाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, हा? ये भूत को कोई लगा है, जो समाज में त्याज्य है, जो भय का कारण है, जिससे सब डरते हैं, जिसको कोई छूना या बात भी करना नहीं चाहते, सुबह सुबह भूत की बात करते हो, बात भी करना जो नहीं चाहते उसको भी गले लगाने वाले कौन है, शिव है। आप चिंता मत करना, अगर समाज से आप त्याज्य है, कोई आपको भूत भी समझ रहा है, कोई आपसे भयान्वित है, हाँ कोई आपका द्वेष कर रहा है, कोई आपसे दूर जाने की चेष्टा कर रहा है, तो चिंता मत करना, एक जगह तो परमानेंट ऐसी है जिसमें आप हमेशा के लिए स्वीकार्य है, और वो है गुरु, वो है शिव, वो है ज्ञानी संत, उनको सब कुछ स्वीकार्य है, हाँ उन्हीं का है भाग है, इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा है, रामकृष्ण भगवान की जो बात है उस पर ये जो एक प्रसंग है वो याद आ गया अभी। उनके जो माता पिता, विवेकानंद जी के जो माता पिता थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो प्राप्ति के लिए शंकर भगवान जो है उनसे आराधना की और कहा कि हमें परमा हमें कोई पुत्र पुत्री प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो, तो दैव योग संतान हो जाते हैं, विवेकानंद जी नरेंद्र का जन्म होता है। अब ये नरेंद्र जो है वो देखो जो एक लक्ष्य होते हैं ना वो उनका क्रोध भी बहुत ही होता है, क्यों, क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो क्रोध का निरंतर उपयोग करते रहते हैं। तो ये छोटे बालक थे 8-10 साल के, पर परमात्मा का नाम स्मरण में भक्ति में ज्यादा मन लगा रहता था और पढ़ने में थोड़ा बहुत होशियार थे इसलिए थोड़ा कम वहां ध्यान रहता था, तो माँ बाप को तो बोलना ही पड़ता है ना भाई पढ़ो, यहाँ जाओ, यहाँ ये करो। तो कोई ऐसा प्रसंग था जहाँ ये विवेकानंद जी नरेंद्र जी को
0: ओम नमः शिवाय, यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta
3: 25.
2: Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோசஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Shanta Vasalmi Matavasni Maiveno Aap Sarovand. Taittiriya Upanishad ka avlamban karte huye, उपनिषद कृतो शांति पाठ को लेकर के चर्चा की जा रही है, जिसमें अभी ये बतलाया कि जो एक एक गुण विशेष के अधिष्ठाता जो देवता, वह देवता हमारे लिए हमारे द्रुतों को दूर करते हुए और हमारे मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए हमें वह बल प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की गई। और अंत में कह दिया गया कि वायु जो है वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, वही ऋत ब्रह्म है, वही सत ब्रह्म है, ऐसा संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए कहा कि वह मुझ वक्ता की, मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात जो वक्ता की रक्षा होगी और श्रोता की रक्षा होगी तो क्या रक्षा होगी, मने श्रवण करने की सामर्थ्य वह हमें प्रदान करे। श्रवण तो हम सभी करते हैं, लेकिन श्रवण की सामर्थ्य, श्रवण का बल क्या है? तो श्रवण वास्तव में वह कहलाता है जहां पूर्व और परा का युक्तियों पूर्वक हम ग्रहण करते हैं, उसी का नाम है श्रवण। पूर्व पर दोनों का हम जो है समन्वय करते हुए और जो ग्रहण करते हैं तो ऐसी ग्राहक शक्ति हमें वह प्रदान करे, यही उसकी रक्षा। और वक्ता के द्वारा पूर्व और पर का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को वह कथन करने में समर्थ हो, ये जो है वक्ता की रक्षा है। इसलिए कहा कि उस वक्ता की रक्षा करे और मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात वक्ता हमको तात्पर्य जो है वो समझा सके, वो कहने में समर्थ हो और हम उसके तात्पर्य को ग्रहण करने में समर्थ। क्यों? आप सुनते हो, वागर्था विवशम प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या संकेत किया? वाक और अर्थ दोनों कैसे हैं? तो कहने लगे दोनों साथ रहने वाले हैं, मिले हुए हैं। तो वाणी और उस वाणी का जो अर्थ है वो दोनों साथ ही रहते हैं। हम अर्थ का जैसे ही अनुसंधान करते हैं तो वो वाणी आ जाती है, और वाणी को हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में वो अर्थ भी रहता, दोनों की मिलित अवस्था है। लेकिन आगे संकेत किया, जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से इस जगत का जो रचयिता, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता जो परमात्मा है, और केवल परमात्मा नाम उसे कब दिया? तो कहा जब वह माया से प्रकृति से उपहित हुआ। तो जहां भी हम परमात्मा नाम लेते हैं, जहां भी हम ईश्वर नाम लेते हैं, या जहां जगत का कर्ता कहते हैं, या जगत का पालन कर्ता कहते हैं, या जगत को लय करने वाला कहते हैं, तो वहां पर प्रकृति से रहित वह होता नहीं। जैसे शब्द और अर्थ की मिलित अवस्था है, वैसे ही प्रकृति और उस आत्मा की मिलित अवस्था में ही ये क्रिया होती है। और जहां पर सृष्टि होना, स्थिति होना, लय होना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर नियम का प्रवाह है, ये नियमतः चलते हैं। तो जितने भी संसार के अंतर्गत कर्तृत्व हैं, कर्म हैं, उन सब में यह एक नियम है, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था, वो नियम कब होता है? तो तभी होता है जहां वाणी भी हो और अर्थ भी हो। और ऐसी वाणी हो जिसका कोई अर्थ न हो, तो वहां क्या फलित होगा? वहां कोई भी नियम जो है चल पाएगा नहीं। ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, वहां पर नियमबद्धता रहती है। अर्थात नियम का सीधा सा मतलब है कि जो भी यह अहम रूप से अपने को जानने वाला, मैं रूप से अपने को जानने वाला, जो भी यह जीव आदि शब्द से कहा जाने वाला प्राणी, वह जब अपने मैं को जानता है कि मैं हूं, तब क्या होता है? तभी उसमें किसी संकल्प या किसी इच्छा की स्थिति पैदा होती। जब तक मैं का बोध नहीं है, तब तक किसी प्रकार की इच्छा होना संभव नहीं। तो मैं हूं एक तरह से ज्ञान हो गया, अपने को जानना। और जब मैं अपने को जानता हूं कि मैं हूं, अब किस रूप में जानता हूं वो बात पृथक है। तो मैं हूं, और मैं जब हूं तो मेरे लिए चाहिए, जब मैं हूं तभी मेरे लिए चाहिए, तो कामना होती है। और कामना होकर के तद अनुकूल फिर प्रयत्न होता है। तो इसी को दर्शन शास्त्र भी जानात इच्छत करोति करके कह देता है। तो ये नियम चलता, और जब इस प्रकार से नियम के अनुसार वह चलता है, पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद कर्म प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद कभी सफलता कभी असफलता, और सफलता असफलता से ही सुख और दुख, ये प्रवाह चलता है। इसी का नाम है संसार। ये क्या है? यही है जगत। तो इस जगत में ये नियम है, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार ही ये सारा जगत चलायमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है। तो अब यहां पर संकेत करते हैं कि यहां पर जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, वैसे ही यहां पर आत्मा और प्रकृति दोनों मिले हुए। अब मिले हुए हैं तो इसका मतलब मिलना जहां हम समझते हैं, तो वहां कैसा समझते हैं? जैसे दूध और पानी को मिला दिया तो क्या हो गया? दूध ही प्रतीत होता, एक ही रूप प्रतीत होता, उसके दो रूप प्रतीत नहीं। तो अब दूध पानी की तरह से वह नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखना यह विशिष्टता है कि जैसे दूध और पानी का संयोग हुआ है, उसमें संयोग रूप मिलना नहीं है। तब क्या है? तो उसको एक शब्द दिया दार्शनिकों ने, कहा तादात्म्य रूप मिलना है। क्या कहा? संबंध तो है, लेकिन संबंध कैसा? कहा तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध नहीं। संयोग संबंध होगा तो वियोग संबंध, पृथकत्व आदि ये सब संबंध आ जाएंगे, लेकिन कहेंगे वहां संयोग संबंध नहीं है। कहा फिर कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। कहा ये तादात्म्य संबंध क्या है? तो कहने लगे कि तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है जहां दो पदार्थ होते हैं वहां तो संयोग होना सिद्ध हो जाता, लेकिन जहां दो पदार्थों की सत्ता नहीं, पदार्थ एक ही है, तो वहां संयोग संबंध तो बन सकता नहीं। लेकिन फिर भी उसमें कहने लगे संबंध है। तो वो कौन संबंध है, तो उसी को कहते हैं तादात्म्य संबंध। माने मिथ्या भूत जो संबंध की कल्पना, ऐसे उस संबंध को ही तादात्म्य संबंध कहते। और तादात्म्य संबंध हमेशा अभेद रूप से होता है। कैसे होता है? अभेद रूप से। अन्य संबंध संयोग रूप से होते हैं, उनकी प्रतीति भी हो जाती है, विशेषता यह होती। हम बर्फ के दो टुकड़ों को लें और दोनों टुकड़ों की सत्ता अलग अलग है, तो उनको हम जब मिलाते हैं तो एक तो दिखाई देते, लेकिन दोनों की सत्ता की प्रतीति भी हमें होती है, दो टुकड़े मिले हुए। लेकिन यहां पर दूसरी सत्ता है ही नहीं, और दूसरी सत्ता है ही नहीं इसलिए जो सब जब उसके माने तादात्म्य रूप संबंध की कल्पना होती है, अभेद संबंध की कल्पना होती, तो वो अभेद रूप से ही होती है, उनमें पृथकत्व का भान होता ही नहीं। इस प्रकार से प्रकृति और वह जिसे परमात्मा कहते, वो दोनों भी क्या हैं? मिलित हैं। और जब दोनों मिलित हैं तो उसी को लेकर के ये सारा प्रवाह है, और उसके द्वारा होने वाला जितना भी कार्य है वो कैसा है, तो उसी को कहते हैं मायिक। क्या कहते हैं? मायिक। क्यों? इसके लिए बतलाया, सत्ता जब एक होती है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो इच्छा किसके लिए होगी? वही दूसरा पदार्थ नहीं है तो दूसरे पदार्थ के न होने पर इच्छा कब होगी? कोई माप, कोई भी इच्छा वहां संभव नहीं। इच्छा तभी होती है जब दूसरा पदार्थ हम समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहा था, और समुद्री यात्रा करते हुए वो जो है व्यापार करने कहीं गया बाहर, और व्यापार करके वापस आ रहा था। तो जब वापस आ रहा था तो व्यापार के द्वारा उसने प्राप्त किया जो धन, उसको अपने साथ में ला रहा था। अब जो है वो यात्रा करते हुए आ रहा था, तो समुद्री यात्रा थी, समुद्र में आ रहा था तो अचानक जो है उसमें ऐसी लहरें आई, जिससे हुआ क्या कि उसका जो पोत था, जहाज था, वो डूबने की स्थिति में आ गया। अब उसने देखा कि जहाज डूबा जा रहा तो धन भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। अब धन से भी अधिक प्रेम किससे होता? का अपने से, ये तो सिद्ध ही है। तो अब जो है यह उसने जब देखा तो अभी जहाज पूरा डूबा नहीं था, लेकिन डूबने की श्रृंखला चालू हो गई थी। तब तक उसे एक टापू दिखाई दिया, उस समुद्र में एक टापू दिखाई दिया, और जब टापू दिखाई दिया तो वो उस जहाज से कूद पड़ा और तैर करके उस टापू पर पहुंच गया। जब टापू पर पहुंच गया तो उसने देखा कि अभी जहाज पूरा डूबा नहीं है, और जब टापू पर अपने को सुरक्षित देखा तो उसके अंतर्गत इच्छा हुई कि इसमें से कुछ तो जीवन के लिए बचा लिया जाए। इच्छा तो वो पुनः फिर कूदा और फिर समुद्र में कूद करके तैरते हुए गया, और तैर करके जहाज के पास पहुंचा तो अब जितना भी जो कुछ ला सकता था, क्योंकि अधिक तो ला नहीं सकता था, तो उसने देखा कि भाई इसमें जो कीमती चीज हो उसे ले लिया जाए, तो वो स्वर्ण सलाका आदि होंगी उसमें, तो उसने एक दो स्वर्ण सलाका जो ले सकता था उतनी ली, और जो है अपने सिर पर बांध ली, और सिर पर बांध करके तैरता हुआ पुनः टापू पर आ गया। इतने में जहाज भी डूब गया। अब वो जो टापू पर खड़ा हुआ था विचार करने लगा कि ये स्वर सलाकाएं हैं, इनका इतना मूल्य है। ये सब विचार चलने लगा उसके जीवन, और जब विचार चलने लगा तो विचार करते करते फिर उसकी नजर जो है गई, पहले तो विचार किया बाजार में इतना मूल्य है, इतने भाव चल रहा तो इतने मूल्य का हो जाएगा, चलो गया सो गया, लेकिन इतना बच गया तो जीवन तो कट ही जाए, ऐसा विचार करने लगा। लेकिन ये विचार कर ही रहा था तब तक उसकी टापू पर दृष्टि गई। टापू को देखा तो समुद्र के अंतर्गत वह टापू था, चारों तरफ जल ही जल था और टापू पर भी कोई भी वनस्पति बालू के सिवाय और कुछ था ही नहीं। जब बालू के सिवाय न कोई वनस्पति थी, यहां तक पक्षी आदि भी नहीं। और जब उसने देखा तो फिर विचार करने लगा कि इस स्वर्ण सलाखा का मूल्य कहां है, बाजार में है, जहां कोई हमसे भिन्न है वहां मूल्य है, लेकिन यहां तो हमारे और स्वर्ण सलाखा के अलावा दूसरा कोई है, तो इस स्वर्ण सलाखा का यह मूल्य क्या है। कम से कम इस बालुकामय टापू ने हमको सुरक्षा दी, लेकिन ये स्वर्ण की सलाखा तो वो भी करने में समर्थ नहीं, तब इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कीमत तो कहां है, कहा बाजार में, लेकिन यहां बाजार तो जाने दो, यहां कोई प्राणी है ही नहीं बालू के सिवाय, तब तो इसकी कीमत इस बालू के बराबर भी नहीं। बालू ने कम से कम हमें आश्रय दिया है, लेकिन इसकी कीमत बालू के बराबर भी नहीं। और जब ऐसा समझ में आया तो उसने उन सुवर्ण की सलाखाओं को समुद्र में फेंक दिया। क्या किया, कहा इनकी कीमत तो इस बालू की बराबर भी नहीं है, और जब बालू के बराबर भी इनकी कीमत नहीं है तो इसको रखने का लाभ भी क्या। और उसने सुवर्ण की सलाखाओं को फेंक दिया, केवल अपना तो अपने में ही वो मस्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है मैं हूं, जहां पर यह शब्द आता है तो वहीं तू खड़ा हो जाता। तू शब्द जहां आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता। मैं और तू ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। तू के बगैर मैं की सिद्धि नहीं है, मैं किसको लेकर के कहोगी, वही सामने वाले को लेकर के ही तो कहोगे मैं हूं, और अपने को लेकर के ही कहोगे तू है, और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किसे मैं कहोगे, किसे तुम कहोगे। और जहां पर ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या हो गया, कहने लगे वहां अब जब मैं ही नहीं रहा, और मैं ही नहीं रहा तो वहां इच्छा भी कैसे होगी, इच्छा का उदय भी नहीं होता। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य तुमने इसलिए मैं को लेकर के कह दिया, प्रक्रिया जो है कि मैं जहां होता है वहीं इच्छा का उदय होता है, इच्छा का उदय होता है वहां प्रयत्न होता है, और प्रयत्न के अनुसार सफलता असफलता होती है, सफलता असफलता के अनुसार हमें हर्ष और विषाद होता है, सुख और दुख होता है। ये प्रक्रिया, ये एक नियम है, नियम को लिख। अब ये जो संसार के अंतर्गत जो भी अवधारणा है तो वहां पर संकेत कर दिया कि संसार का जो मूल है, संसार का जो कारण है वो कैसा है, का मिलित है, तादात्म्य संबंध वाला है। माने वहां पर प्रकृति और वह परमात्मा दोनों की मिलित अवस्था, तादात्म्य रूप से मिलित अवस्था। अब प्रकृति नाम दो, भ्रम नाम दो, भूल नाम दो, माया नाम दो, ये सब क्या है, या भ्रांति नाम दो, ये सब नाम तो हैं लेकिन एक ही वस्तु के नाम है, ये अलग अलग नहीं। चाहे उसे अज्ञान कह दो, माया कह दो, प्रकृति कह दो, भ्रांति कह दो, भ्रम कह दो, कल्पना कह दो, ये सब क्या है, ये एक ही वस्तु के नाम। और इससे जब मिलित होना, और कौन मिलित हुआ, तो कहने लगे आत्मा। अब ये मिलित होना कैसे है? तो ध्यान देना थोड़ा, अज्ञान और ज्ञान दोनों कैसे हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अज्ञान उसका विपरीत, तो दोनों कैसे हैं, विरोधी है। दोनों कैसे हैं, विरोधी। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों कैसे हैं, का विरोधी। और प्रकाश और अंधकार को मिलाना चाहो तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। प्रकाश और अंधकार दोनों मिलते नहीं, दोनों में दूरी है, लेकिन दूरी होते हुए भी उनमें मिलना है। अब दूरी होते हुए मिलना कैसा, तो यही विलक्षणता। तो वास्तव में ये कभी मिल नहीं सकते, विरोधी धर्म है, लेकिन फिर भी इनके अंतर्गत मिलने की कल्पना की गई। अब कहो कैसे मिलना, तो इसके लिए उदाहरण देते हो ना, कहा किसी को दो चंद्रमा दिखाई देते, तो दो चंद्रमा दिखाई क्यों देते, कहा आंख पर अंगुली लगा ली है तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगे। तो इसका मतलब आंख देख तो रही है, लेकिन देखते हुए भी क्या देखने लगी, जो जैसा नहीं है वैसा है। चंद्रमा एक है, लेकिन एक होते हुए उसने क्या देख लिया, कहा दो देख लिए। और यही स्थिति है यहां। अज्ञान जो है उस ज्ञान को जो है आवृत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या कह देते हैं, कहा आवृतम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत्य जंतवा, ये कह देते हो। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया, और ज्ञान आवृत हो गया कहा तो कहा तेन मुह्यंत जंतवा, उसके द्वारा जहां आवृतपना है ज्ञान का वहां पर क्या होगा, कहा जंतवा मुह्यंती, वहां पर जंतु जो हैं वो क्या है, मोह को ही प्राप्त होंगे। और मोह का मतलब क्या है, विपरीत बुद्धि। मोह वैचित्य अर्थ में धातु से ही मोह शब्द बनता, मोह शब्द बनता, मूढ़ शब्द बनता, जिसका अर्थ होता है वैचित्र देखना, विपरीत देखना। तो जहां पर ये स्थिति है तो वहां पर क्या है, तो वहीं पर कह दिया तेन मुह्यंत जंतवा, कौन मोहित होते हैं, कौन विपरीत देखते हैं, तो क्या नाम दिया, जंतवा। जंतु किसे कहते, जायते इति जंतु, जिसका जन्म हो, और जिसका जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, ये निश्चित नियम है। तो अब जो है वहां तक तब तक वो जंतु है, ये संकेत कर दिया। और क्यों जंतु है, तो कहा जब तक अज्ञान है, अज्ञान से आवृत, लेकिन ये अज्ञान की आवृतता कह तो दी जाती है समझाने के लिए, लेकिन किस प्रकार की है, तो ठीक जैसे वो चंद्रमा दो नहीं है लेकिन उसे दो करके देख रहा है ना, तो क्यों देख रहा है, तो वहां अज्ञान जो है ढका हुआ नहीं है, वो ज्ञान ढका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक देश विशेष में एकांश में क्या है, उस अंगुली का आ जाना हो गया, उस उतने से ही उसने क्या है विपरीत देखना शुरू कर दिया। तो अज्ञान की वास्तव में कोई सत्ता भी नहीं, अज्ञान को क्या माना जाता, अंधकार की भी कोई सत्ता नहीं कि है, कुछ लोग तो मानते हैं नीलम है तमस चलती नैयाह कादी, कह देते कि अंधकार की भी सत्ता, लेकिन आकाश में जैसे नीलिमा होती, नीलिमा की जैसे आकाश में सत्ता नहीं, वैसे ही लेकिन प्रतीति होती, प्रतीयमान है, लेकिन वास्तव में नीलिमा की कोई सत्ता आकाश में नहीं, ये सब जानते हो, इतना तो समझ लेते हो, क्योंकि आकाश अवकाश रूप है, आकाश शून्य है, रूप से रहत है, और जहां पर रूप नहीं होगा, आकार नहीं होगा, तो वहां कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो आकाश में जो नीलिमा की प्रतीति होती है, तो तलमलिनताम इत्यादि करके कह दिया है, बाला तलमलिनताम अध्यस्यन्ति, वहां जो बाल शब्द से कह दिया, अज्ञानी लोग जो है तल की मलिनता का ही अध्यास उसमें कर लेते, अध्यास का मतलब यह है तस्मिन तदबुद्धि, जो जैसा नहीं है उसे वैसा देख लेना, ये अध्यास है। तो अब यहां पर संकेत कर रहे हैं कि है नहीं वैसा, लेकिन वैसा समझ लेना, इसी का नाम है अज्ञान। तो अज्ञान की सत्ता है, या यूं कह दें एक अंश विशेष की विस्मृति का नाम ही क्या है, अज्ञान। अब क्या है विस्मृति, तो वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु की विस्मृति हो जाना ही क्या कहलाता है, अज्ञान कहलाता। जैसे
3: वह सच्चित आनंद रूप है, लेकिन आनंद रूप की विस्मृति हो गई, सत्ता की विस्मृति नहीं हुई, चित्त की विस्मृति नहीं हुई। मैं हूं ये तो सभी कहते हैं, लेकिन मैं सुखरूप हूं ये कहने में असमर्थ। तो विस्मृति कितने अंश में? एक अंश। जैसे सूर्य जो है पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। सूर्य को क्या मानते हो? सूर्य रूपी ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। और ये भी मानते हो कि पृथ्वी इसका चक्कर लगाती, लेकिन चक्कर लगाते समय, और अंडाकार भी उसे स्वीकार करते हो, चक्कर लगाते समय जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सम्मुख होता है तो उसे क्या कहते हो? का दिन, प्रकाशमय। और जो भाग उसका पृष्ठता में चला जाता है तो उसे क्या कहते हो? रात्रि कहते हो। और इसके लिए आप तर्क भी दे देते हो कि भाई आज भारत में दिन है लेकिन अमेरिका में रात्रि है। तो क्यों? अमेरिका भी पृथ्वी पर ही तो विद्यमान है, तो पृथ्वी का भाग उस समय अमेरिका का पृष्ठ भाग में पड़ रहा है, इसलिए अंधकार है, और भारत का जो है सम्मुख पड़ रहा है।

0: जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने आ जाएगा तो क्या वह अंधकार रहेगा। ऐसे ही जहां पर यह जीव जो अपने को मैं करके जीव रूप से स्वीकार करने वाला है और वो भी सूर्य रूपी आत्मा के सम्मुख जब हो जाता है, उधर उसकी दृष्टि हो जाती है, तो वहां पर भी अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती है, संकेत। लेकिन जब तक उसकी सम्मुखता पूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं विस्मृति बैठी है, तब तक ये जीव भाव रहता। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, यद्यपि अंधकार और प्रकाश दोनों का कभी भी संयोग संबंध संभव है ही क्या, नहीं है, मिलना संभव नहीं है, संयोग संबंध नहीं है। माने दो पदार्थ सत्ता वाले हों तभी उनका संयोग संबंध हो सकता है, और एक पदार्थ सत्ता वाला एक पदार्थ की सत्ता नहीं है तो संयोग होगा क्या, तो संयोग संबंध नहीं हो। और संयोग संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो मिले हुए हैं तब ये कहा जाए तो कैसे, एक की सत्ता एक की सत्ता नहीं, तो मिलना कैसा है, तो कहा वो तादात्म्य रूप। तादात्म्य मतलब अज्ञान से वो माना हुआ। अज्ञान क्या है, तो भ्रांति कहें, अज्ञान कहें, माया कहें, प्रकृति कहें, कल्पना कहें, कुछ भी कहें, तो इससे जो है वो क्या हुआ है, तो कहने लगे वो संबंध वाला मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम शिवाय। शैवम.org அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனை. இது நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிம்மாசன பிரிய, வழங்குபவர் சிவலட்சுமி பூவாள் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாயனம்.

प्रसवितार्पयत्वर्पयतु प्रसविता सविता प्रार्पयतु प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयतु प्रप्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आ श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्याय

इस सारा का सारा विश्व प्रपंच मूल रूप में अपने ही अंदर हैं। आप और हम, यह और वह, सब के सब एक ही सत्ता में स्थित हैं, उसी सत्ता के अंतर्गत है। जैसे सूर्य के प्रकाश के अंदर ये सब हैं, सूर्य के प्रकाश के बाहर ये कोई भी नहीं है। ये कुर्सी, टेबल, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, पशु पक्षी, मनुष्य, राजा, प्रजा, मंत्री, चपरासी, सब के सब उसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, या यूं कहिए कि सब के सब उस आकाश के अंतःपाती हैं। इसी तरह ये सारा का सारा विश्व प्रपंच निज अंतर्गत हमारे ही अंदर है। वास्तव में आप लोग मेरे अंदर हैं, आप मेरे से बाहर नहीं हैं। मुझे भ्रांति हो रही है कि आप बाहर हैं, मैं आपके अंदर हूं, आपसे बाहर नहीं हूं। आपको भ्रांति हो रही है कि बाहर है। ये बात प्रथम श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी ने संकेत किया। ये भ्रांति कब टूटेगी और ये सब ही मेरे ही अंदर हैं, ये अपरोक्ष अनुभव कब होगा? तो उसका उत्तर दिया है कि यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम्। जब व्यक्ति उस माया निद्रा से जगता है, तब वह व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरी सत्ता के अलावा जगत में कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, क्योंकि सत अनेक नहीं हो सकते, सत एक है और जो सत है वही सत्ता है। सत्ता अलग और सत अलग ऐसा नहीं मान लेना। हर वस्तु में जो सत्ता है, जो होनापना है, वो एक ही सत्ता सभी में सन्निहित है। इस प्रकार के जगाने वाले जो गुरु हैं, उस माया निद्रा से जगा देने वाले जो गुरु हैं, वो कोई लौकिक और कोई साधारण गुरु नहीं, वो तो साक्षात ज्ञानमूर्ति भगवान शिव ही है। क्योंकि उसमें से जगाने में वही दक्ष हैं, हमारे मां बाप दक्ष नहीं है। दक्ष माने समर्थ, कुशल। हमारे मां बाप तो रात्रि के निद्रा से जगाने में कुशल हैं, मोह निद्रा से जगाने में समर्थ नहीं, कुशल नहीं है, इसलिए उनको दक्ष कहा। भगवान शिव को दक्ष कहा, क्यों? क्योंकि वह चाहे वो चाहें प्रसन्न हो जाएं, तो वह जीवात्मा चाहे जैसे भी निद्रा में सोया होगा जगा देंगे। जहां भी सोया होगा पृथ्वी के इस किसी भी कोने में जाकर सोया हो, पहले क्या होता था, व्यक्ति को कुछ ज्यादा आराम से सोना होता था तो घर में अनेक बच्चे होते थे, छुट्टी के दिन में बच्चों का भी छुट्टी, स्कूल की छुट्टी, स्कूल जाना नहीं पड़ता है, अब बाप की भी छुट्टी होती है, उसको भी नौकरी जाना नहीं है। अब बाप ये चाहता है कि मैं आज खूब दिन भर सो, बच्चों को छुट्टी है कि वो चाहते कि दिन भर खेलें। तो बंबई की अवस्था में तो कहां खेलेंगे, तो उसी रूम में जाकर खेलेंगे जहां बाप सोना चाहता है कि नहीं, बोलो। तो वो चाहता है कि ऐसी जगह जाकर सोऊं कि सो जाऊं कि जहां बच्चे न पहुंचे।
तो हॉल में सोने लगेगा तो बच्चे तो वो क्या करता है कि दरवाजा बंद करता है, बच्चों को कहता है हॉल में खेलो तुम लोग, मुझे कमरे में सोने दो, एकांत में सोने दो। अरे बाबा तुम कहीं भी सो जाओ, वो यदि चाहेगा जगाना तो तुमको जगा देगा, खाट के नीचे सो जाओगे तो भी जगा देगा, खाट के ऊपर सो जाओगे तो भी जगा देगा। इसीलिए उसको कहा दक्ष, परमात्मा को इसीलिए कहा दक्ष। और इसी दक्षत्व होने के चलते ही शिव को दक्षिणा मूर्ति कहा। मूर्ति शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, तो दक्ष स्वरूप यानी दक्षिणा स्वरूप, कुशल स्वरूपता वो जो शिव की स्वरूप है दक्षिणा मूर्ति, उसको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि वह जगा देता है हमको। प्रश्न यह है कि अभी तक क्यों नहीं जगा रहा है, क्या ये राजी है परमात्मा कि हमारे सोने में ही वो राजी है कि सोते रह जाएं? कई बार ऐसा होता है कि घर में मां को कुछ काम करना होता है और बच्चे सो रहे हो तो मां यही चाहती है कि वो सोते रह जाएं, है ना? और प्रार्थना भी करती है कि जल्दी ना उठे तो मैं अपना काम पूरा कर लूं। आप लोग तो अनुभवी हो माताओं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों ने बड़ा किया है तो उस अवस्था में आपके मन में यही भावना आई है कई बार, ये बच्चे सोते रह जाएं तो अपना काम करें। और कभी किसी कारण से बच्चा जल्दी उठ गया तो फिर कहते हैं कि आज बच्चा जल्दी उठ गया, काम ही नहीं कर पा रहे, सोता भी नहीं है। कई बार बच्चों का सो जाना भी मां को इष्ट है और कई बार बच्चों को फिर सोते रह जाना इष्ट नहीं है, जग जाना इष्ट है। अब कहीं जाना हो, बच्चा सो रहा है, बीच में उठाओ तो रोएगा, और अपने आप उठ जाए तो नहीं रोएगा, तो फिर प्रार्थना करती है मन ही मन जल्दी उठ जाए तो अच्छा है। तो जैसे हमारी अवस्था है उसी तरह शायद परमात्मा के भी हो, वो भी हमको सुलाए रखकर कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहता होगा, शांति से भजन करना चाहता होगा, इसलिए हमको नहीं जगा रहा है। और दूसरी बात यह भी जानता है कि उठेगा जगेगा तो ये तूफान करेगा, सोते रह जाओ तो तूफान क्या करेगा, ये तो हो सकता है कौन बहुत से प्रयोजन है इसलिए हमको शायद नहीं जगा रहा है। तो जगाएगा कभी न कभी तो जगाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जगने की वासना है, इसलिए उस वासना कामना इच्छा

0: परमाणु उपादान कारण से बना है, पृथ्वी नष्ट होने पर भी इस पृथ्वी के जो परमाणु छोटे कण हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अनंत आकाश में उड़ते रहेंगे। तब वही परमाणु ईश्वर के इच्छा से, संकल्प से, प्रयत्न से किसी काल में, किसी देश में एक आपस में मिलने लग जाएंगे। तब मिलते मिलते सारे परमाणु एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब ये पृथ्वी सिद्ध होती है, पृथ्वी पैदा होता है। इसी को आरंभवाद कहा, इसको वेदांत माने आरंभवाद, नैयायिक लोग आरंभ कहते हैं। सृष्टि का जो आरंभ है, पहला आरंभ है, अलग अलग परमाणु जुड़ने का आरंभ, किसी देश में, किसी काल में, किसी निमित्त कारण के इच्छा से, संकल्प से वो जुड़ना आरंभ होता है। तो वो संकल्प वाला ईश्वर हो गया, देश पहले से विद्यमान है, काल पहले से विद्यमान है, परमाणु पहले से विद्यमान है। तो उस पहले से विद्यमान देश में, पहले से विद्यमान काल में, पहले से विद्यमान ईश्वर के संकल्प से, पहले से विद्यमान ये परमाणु एक दूसरे से जुड़ना आरंभ होते हैं, तब जुड़ते जुड़ते पृथ्वी बन जाता है। ये परमाणुवाद, आरंभवाद नैयायिकों का है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, उपादान कारण भिन्न चाहिए और निमित्त कारण भिन्न चाहिए। और तुमने तो ये कहा कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, अकेला परमात्मा था, उस परमात्मा से ये सारे जगत उत्पन्न हो गए। तो तुम्हें ये बताना होगा कि परमात्मा निमित्त कारण है कि उपादान कारण है, तुम्हें स्पष्ट करना होगा। दो कारणों में से एक कारण मान लो। परमात्मा यदि निमित्त कारण मानते हो तो परमात्मा जड़ हो जाएगा, जैसे परमाणु जड़ है निमित्त कारण रूप। तो निमित्त कारण मानते हो परमात्मा को तो जड़ हो जाएगा। परमाणु माने उसको नहीं, उपादान कारण मानते हो तो परमात्मा जड़ हो जाएगा। परमात्मा को उपादान कारण मानते हो तो परमात्मा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के उपादान कारण परमाणु है तो परमाणु जड़ है, इसी तरह सारे जगत का उपादान कारण परमात्मा मानते हो तो परमात्मा को भी जड़ होना चाहिए। और जड़ परमात्मा होगा तो फिर चैतन्य कौन होगा, बताना पड़ेगा कि निमित्त कारण कोई चैतन्य तुमको परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा बताना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा को निमित्त कारण मानते हो तो परमात्मा से भिन्न उपादान कारण, दूसरा जड़ उपादान कारण परमात्मा से भिन्न अस्तित्व वाला मानना पड़ेगा। कहीं भी ये देखने में नहीं आया, व्यवहार में, प्रयोग में, कि कुम्हार कुंभकार खुद मिट्टी बनकर घड़ा बना लिया, तो वह मिट्टी भी बना और कुम्हार भी बना रहा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। उन लोगों का एक पक्का दृष्टांत ही यही है, कुंभकार यानी कुम्हार और मिट्टी। तो मिट्टी को कुंभकार से भिन्न, जड़ उपादान कारण घटकार्य के लिए, कुंभकार को मिट्टी से भिन्न निमित्त उपादान कारण चैतन्य घट बनाने के लिए, ये अलग अलग सत्ता, अलग अलग अस्तित्व होना चाहिए। तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कार्य उत्पत्ति से पहले पांच वस्तु तो होनी चाहिए चाहिए। तुम केवल एक मान रहे हो तो कैसे कार्य उत्पन्न होगा। और जो कुम्हार कुंभकार घड़ा बनाएगा तो किसी न किसी स्थान में बनाएगा, शून्य में तो बनाएगा नहीं। कोई भी कार्य शून्य अवकाश में तो बनाएगा नहीं, कोई न कोई स्थान चाहिए, आधार चाहिए। किस आधार में बैठकर ईश्वर जगत बनाएगा? निराधार ईश्वर जगत के निर्माण कर पाता है? कोई करता निराधार कोई वस्तु को उत्पन्न कर सकता है? ये पूर्व पक्ष है सब। और वो ईश्वर बनाएगा किसी न किसी समय में, बिना समय का बनाएगा। कितनी समय में जगत बनाना है, कितनी समय में जगत रखना है, कितनी समय में जगत को नष्ट करना है, कौन से समय में बनाना है, कौन से समय में रखना है, कौन से समय में नष्ट करना है, काल सापेक्ष है। किसी भी कार्य के लिए कार्य काल निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। देश सापेक्ष है, देश निरपेक्ष कोई कार्य नहीं हो सकता। वस्तु सापेक्ष है, उपादान कारण निमित्त कारण अलग अलग हुए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और तुम इन सब की अपेक्षा रखे बिना अकेला ईश्वर सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय शून्य अकेला ईश्वर साधन निरपेक्ष जगत को उत्पन्न करके दिखाता है, ये हमको समझ में नहीं आती। ऐसा वो लोग पूर्व पक्ष लोग कहते हैं। और इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन है, दो वस्तु को नित्य मानता है। न्याय दर्शन तो पांच छह वस्तु को नित्य मानते हैं और सांख्य दर्शन दो वस्तु को नित्य मानता है, प्रधान और पुरुष। ये हमेशा नित्य रहेंगे। प्रधान त्रिगुणात्मिका है, विकारी है, परिणामी है। साम्य अवस्था में प्रधान प्रधान के रूप में, प्रकृति प्रकृति के रूप में रहती है, कोई जगत प्रतीत नहीं होता। और पुरुष सृष्टि जब तक नहीं रहता तब तक पुरुष असंग रहता है, प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं रखता है, असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है। पुरुष जब असंग निर्लिप्त रहता है और प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है तो दोनों अलग अलग रहते हैं। जब प्रकृति पुरुष के सान्निध्य में पहुंचती है तो पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करते ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। चेतन पुरुष के सान्निध्य में रहते ही जड़ प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है। पुरुष को वे लोग असंग मानते हैं और चेतन मानते हैं, प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानते हैं और जड़ मानते हैं, पुरुष निमित्त कारण मानते हैं और प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं। पुरुष जगत उत्पत्ति में केवल उसका सान्निध्य निमित्त है और कोई निमित्त नहीं है। प्रकृति के सान्निध्य और पुरुष पुरुष का सान्निध्य, प्रकृति दोनों के सान्निध्य से प्रकृति में क्षोभ यानी विकार आता है तो पहला परिणाम प्रकृति का महत्तत्व हो जाता है। और उस महत्तत्व में फिर पुनः विकार आ जाता है तब तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न होता है। वो प्रकृति से ही महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार तीन भेद वाले हैं क्योंकि प्रकृति तीन गुण वाली है। और त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य रूप जो अहंकार है वो अभी तीन भेद तीन गुण वाली है। और सात्विक अहंकार सत्वगुण के चलते सात्विक अहंकार, रजोगुण के चलते राजसिक अहंकार, तमोगुण के चलते तामसिक अहंकार। उसी पुरुष के चैतन्य पुरुष के सान्निध्य को प्राप्त करके प्रकृति ये त्रिविध अहंकार को उत्पन्न करती है और यही त्रिविध अहंकार के द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है। ये न्याय माने सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन की प्रक्रिया है। तो कम से कम सृष्टि के आरंभ में दो वस्तु होनी चाहिए, पुरुष यानी चैतन्य निमित्त कारण, प्रकृति यानी जड़ उपादान कारण। उस बात को सुरेश्वराचार्य जी ने इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले व्याख्या में इस बात का संकेत किया। माया प्रधानम अव्यक्तम अविद्या ज्ञानम अक्षरम अव्याकृतं च प्रकृति तमयित्य विधीयते। एक ही प्रकृति का अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग नाम दिया है। उसी प्रकृति को वेदांती लोग माया कहते हैं, उसी प्रकृति को सांख्य लोग प्रधान कहते हैं, उसी प्रकृति को वैष्णव लोग अव्यक्त कहते हैं, उसी प्रकृति को योग लोग पतंजलि योग दर्शन अविद्या कहते हैं, उसी प्रकृति को अन्य लोग अज्ञान कहते हैं और उसी प्रकृति को कुछ लोग अक्षर कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं और कहीं कहीं उसको प्रधान और किसी को माया इति कोई तमह कहते हैं। ये केवल पर्यायवाची है, वस्तु एक है, अनेक नामों से उल्लेखित वस्तु एक है। तमह कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, माया को, अव्यक्त को, अव्याकृत कहो, अविद्या कहो।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Thirunavukkarasu Nayanar. Presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे एक बहुत ही प्रचलित संत की कहानी जिनका नाम है तिरुनावुक्करसर। तिरुमुनई पाड़ी के समीप तिरुवाई मयूर नामक रमणीक क्षेत्र है। यहाँ एक कृषक परिवार में पुगलनार के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया तिलकवती। कुछ वर्षों के बाद इसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुगलनार ने इनका नाम रखा मरणनीकी। मरणनीकी का मतलब है अज्ञान को दूर करने वाला। परिवार धन धान्य से समृद्ध था। इस परिवार में जन्म मरणनीकियार ने विविध प्रकार की कलाओं का ज्ञान अर्जित किया। जन कल्याण के कार्यों में इनकी विशेष रुचि थी। तालाब खुदवाना, सड़कें बनवाना, पथिकों को पानी पिलाना आदि में इन्हें आनंद मिलता था, पर न जाने क्यों इनका मन अशांत रहता था। उनकी बहन तिलकवती की सगाई जिस व्यक्ति से हुई थी वह एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तिलकवती ने आजीवन वैधव्य का व्रत स्वीकार किया। कुछ समय बाद भाई बहन के सिर से माता पिता का की छाया भी हट गई। विविध कलाओं के ज्ञान से युक्त होने पर भी मरणनीकियार को विचित्र अशांति की अनुभूति होती थी। मानसिक अशांति के कारण वे जैन धर्म से जुड़ गए और उसी में दीक्षा प्राप्त की। कई वर्षों तक इस मार्ग पर अग्रसर रहे। छोटे भाई की इस गति से दुखी तिलकवती भगवान शिव से इनकी शिकायत करती और मंदिर की सेवा में पूरी तरह मग्न रहती। यह बता दूं कि उस जमाने में शैव भक्ति को दक्षिण भारत में काफी स्थान मिला था और जब मरणनीकियार ने पारंपरिक या पारिवारिक शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म में जाने का निश्चय किया तो उनके परिवार वाले, सगे संबंधी और उनकी बहन काफी दुखित हुई। एक बार मरणनीकियार असहनीय पेट दर्द से पीड़ित हुए। सभी प्रकार के उपचारों के उपरांत ही उनकी पीड़ा ठीक नहीं हुई। वे अपनी बहन के शरण में पहुंच गए। बहन तिलकवती ने उनकी देखभाल की और भगवान शिव की विभूत लाकर उनके पेट में रगड़ दिया। इसके कुछ ही क्षण बाद उनका रोग पूरी तरह मुक्त हो गया और वे पुनः स्वस्थ हो गए। मरणनीकियार ने भगवान शिव की आराधना फिर से शुरू कर दी और उन्होंने वापस शैव धर्म को अपना लिया। इनका वाणी पर अद्भुत अधिकार था, इसीलिए इन्हें तिरुनावुक्करसर कहा गया है। तिरुनावुक्करसर का मतलब है जिनके जीवा पर विशेष आदेश है। जैन धर्म का परित्याग करने के अपराध में जैन धर्मानुयायियों, ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मा प्रथम के से तिरुनावुक्करसर की शिकायत कर दी। उस राजा ने तिरुनावुक्करसर को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। इन्हें चने की भट्टी में डाल दिया, विष पिलाया गया, मदमक हाथी से कुचल कर मारने का प्रयास किया गया, कमर पर भारी शिला बंधवा कर समुद्र में फेंका गया, पर भगवान शिव की कृपा से तृणावकर्सर का बाल भी भांका नहीं हुआ। सच्चे हृदय से ही वे निष्ठावान थे और उनकी प्रार्थना से शिव काफी प्रसन्न थे। जिस प्रकार प्रहलाद को हिरण्यकशिप ने मारने का प्रयास किया, उसी तरह इस राजा ने तृणावकर्सर को काफी यातनाएं दी, पर भगवान शिव की कृपा से उन्हें जरा भी हानि नहीं पहुंची। तृणावकर्सर सदा एक लंबी खुरपी अपने कंधे पर रखते थे। यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक मंदिर में परिसर से गुजरते हुए वे घास छीलकर सफाई करते थे। ये सेवा उन्हें विशेष प्रिय थी। तिरुज्ञान संबंधित की भांति तिरुनावकर्सर ने अनेक शिव मंदिरों की यात्रा की और प्रत्येक मंदिर में शिवजी की रमणीय शब्दों से स्तुति की। जब एक कहानी बता दूं, एक दिन ये गांव में पहुंचे जहां एक ब्राह्मण ने इनका खूब आदर सत्कार किया। उसी समय ब्राह्मण का पुत्र सर्पडस के कारण मृत हो गया। तिरुनावकर्सर ने भगवान की स्तुति करके मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उसी समय एक दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया। तभी तिरुनावकर्सर और तिरुज्ञान संबंधर ने मिलकर दो मठ खोले और जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक अन्नदान का पूरा प्रबंध किया। उनकी सेवा का यह सामाजिक पक्ष है। पल्लयारे वडदली नामक स्थान में कुछ विधर्मियों ने एक शिवलिंग छिपा दिया था। तिरुनावकर्सर ने वहां जाकर घोषणा कर दी कि जब तक शिवलिंग के दर्शन नहीं मिलेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस देश में सबसे पहले निराहार सत्याग्रह का मार्ग इन्होंने ही दिखाया है। उसके बाद उन विधर्मियों ने वापस शिवलिंग को वही रख दिया जहां पर उनका स्थान था। फिर तिरुनावकर्सर ने कैलाश जाने का मन कर लिया। बर्फीले प्रदेश में उनके घमंडियों में रक्त प्रवाह रुक जाने के बाद के साथ उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वे धरती पर गिर पड़े। फिर भी कैलाश यात्रा का निश्चय नहीं छोड़ा और गिरते पड़ते कैलाश मार्ग पर अग्रसर होते गए। शिव एक शैव संत के रूप में प्रकट हुए। उन्हें पुनः पुनः समझाया कि मानव शरीर के साथ कैलाश पहुंचकर शिव का दर्शन कर पाना असंभव है, अतः लौटना ही श्रेयस्कर है। इनका उत्तर था कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन मरने वाला है, तब क्यों ना अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास किया जाए। शरीर के विनिष्ट होने तक आखिरी सांस तक प्रयत्न करता ही रहूंगा अपने शिव तक पहुंचने की। इस प्रकार देश के प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव इन्हें ही मिला। भगवान की अद्भुत कृपा देखिए कि उनके आदेश पर निकट के एक सरोवर में जाकर तिरुनावकर्सर ने स्नान किया। जब डुबकी लेकर उठे तो स्वयं को दक्षिण के तिरुवायुर में पाया। कैलाश में शिव के दर्शन उन्हें यही हो गए, इसका उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। अनेक स्थलों पर जाकर स्तुति गाने के बाद तिरुनावकर्सर तिरुकुंभकलूर नामक स्थान में भगवान में लीन हो गए। दास भक्ति के मार्ग के श्रेष्ठ पथिक एक दृढ़ साधक मन वचन और कर्म से पूर्णतः अपने शिव के रूप में लीन तिरुनावकर्सर का एक प्रसिद्ध नाम अप्पर भी है। तिरुज्ञान संबंधर द्वारा उनको अप्पर नाम से संबोधन करने के बाद उनका यह नाम अप्पर अधिक प्रसिद्ध है। अप्पर का मतलब है पिता। वे पिता समान सबकी मनोकामना करते थे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
5: आपको भोजन में सबसे बढ़िया असना, असना माने भोजन, आपका भोजन, आपको बड़ा प्रिय लगने वाला भोजन, असना आहार, उसके लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, वो हमारी बस की बात नहीं है, है कि नहीं बोलो? समुद्र मंथन किए बिना शिवजी के लिए प्रिय भोजन आप तैयार कर पाओगे? हैं? बड़े खुशी से पान करते हो भगवान शिव, बड़े प्रेम से बड़े खुशी से विष पान करते हैं ना, तो समुद्र मंथन से क्या निकला? विष जहर। अब वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और समुद्र मंथन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं आपकी पूजा कैसे करूं महाराज? देवताओं और असुरों ने जैसे पूजा की, ऐसे पूजा तो मैं तो नहीं कर सकता हूं। जलदि मथन दक्ष नैव, दक्ष माने कुशल समर्थ, जलदि मथन दक्ष नैव, मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं समुद्र मंथन करने में, तो आपके लिए भोजन तैयार मैं कैसे करूंगा? और आपकी सपरिया, आपकी पूजा में भोजन पहले चाहिए, भोग लगाना है, और दूसरी है पूजा के अंग में पुष्पहार, फूलों की माला, और आपको सबसे प्रिय मालाओं में सबसे प्रिय है नाग की माला, सर्पमाला, उसके लिए मुझे पाताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि नागों का लोक है पाताल, और पाताल भेदन किए बिना नाग लाना संभव नहीं है, पाताल भेदन करने की क्षमता मुझ में, जलदि मथन दक्ष नैव पाताल भेदी, न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, और बढ़िया वस्त्र की आवश्यकता है, पूजा में वस्त्र उपवस्त्र में समर्पयामि, वस्त्रार्पण करना पड़ेगा, और आपको वस्त्रों में से दो वस्त्र आपको बड़ा प्रिय है, एक तो दंतित्वक मृग कृत सुंदरांबर धरे, दंती, दंती माने हाथी, दंतित्वक माने हाथी की चमड़ा, हाथी का चमड़ा, और हाथी को मारना कोई साधारण खेल है क्या? वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, लुब्ध माने शिकारी, शिकारी, वन मृग माने बाघ, बाघंबर, बाघंबर चाहिए, मृग चर्म चाहिए, या के और मुझे जंगलों में भटककर इन पशुओं को मारने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं आपके लिए कपड़ा लाऊंगा कहां से? बोलो, हाथी मारने की हिम्मत, एक मच्छर मारने की हिम्मत नहीं है मेरी, और हाथी मारकर वस्त्र लाए मैं कहां से लाऊं? बाघ, बाघ का तो नाम सुनते ही हमारा दिल हिलने लगता है, और उसको मार के हम वस्त्र ला पाएंगे? नहीं महाराज। और हमको पता है बम्बई में कपड़ा का मार्केट क्या क्या नाम है, भूला है, मुलची जेठा मार्केट, भुलेश्वर क्या क्या स्वर है, कालवा देवी, चलो वहां का कपड़ा लाकर शिवजी को दोगे क्या खुश होंगे? वो नहीं होंगे, उनको तो बढ़िया हाथी के चमड़ा लाकर दोगे ना, वाह क्या कहना, दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिम चलाम अन्यस्तु किम कर्म भी, है ना? एक पुस्तक है, वो आप लोगों की बस की बात नहीं है, सुवासित रत्न भंडागारम, संस्कृत के सुवासित श्लोक है, उसमें 1,00,000 श्लोक, एक नहीं दो नहीं, 1,00,000 श्लोक है वो, सुवासित रत्न भंडागार, वो खजाना ही आगार है, आगार है। ऐसे ऐसे सुवासित श्लोक है उसमें, बड़ा विचित्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो प्रसंग। एक समय की बात है, महाप्रलय हो चुका था, भगवान विष्णु पालन करना तो था नहीं, महाप्रलय हो चुका था इसलिए भगवान विष्णु का कोई काम था नहीं, तो विष्णु का उस समय वैकेशन चल रहा था, तो वैकेशन पीरियड में अपने पत्नी के साथ वैकुंठ में, भूदेवी श्रीदेवी के साथ वैकुंठ में बैठे हुए थे, क्योंकि संसार में एक भी प्राणी बचा नहीं था, प्रारब्ध भोगने के लिए एक भी प्राणी था नहीं, सब महाप्रलय में लीन हो गए थे। तो भगवान विष्णु रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, पालन करने के लिए कोई प्राणी नहीं था, तो वैकेशन हो गया, छुट्टी। अब क्योंकि संहार हो चुका था इसलिए अब शिव जी को भी काम था नहीं, उनका भी वैकेशन ही चल रहा था, वो तो कैलाश में थे। भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस समय छुट्टी का समय है, फुर्सत का समय है, जरा जाते हैं कैलाश में, भोले बाबा से मिल के आ जाते हैं। तो वैकुंठ से वह अपने गरुड़ में चढ़े और कैलाश आ गए। विद्वानों की एक मान्यता है, वो अनभ्यास विषम विद्या, कोई भी विद्या हो वो अभ्यास से ही फलीभूत होता है, यदि तुमने अभ्यास नहीं की तो वह जहर का काम कर जाएगा वो विद्या, अनभ्यास विषम विद्या। अजीर्णे भोजनम विषम, पेट में जाने के बाद वो भोजन परिपक्व हुआ नहीं, पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, वो जहर का काम करेगा। वृद्धम सवा दरिद्रस्य, विद्वानों के सभा में कोई दरिद्र पुगा पहुंच गया तो वो, और चौथी लाइन हम नहीं बोलेंगे, वो बोलने लायक नहीं है। वृद्धस्य तरुणी विषम, नीतिकार का वाक्य, ये सुभाषित है। तो इसलिए भगवान इस बात को जानते थे, विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, महाप्रलय में तांडव नृत्य के बिना जगत का संहार नहीं हो सकता है, और फुर्सत हो गया करके उसका अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। तो भगवान शिव तो अंदर गुफा के अंदर दिगंबर होकर अपनी विद्या का अभ्यास कर ही रहे थे, और बाहर दरवाजे में नंदी को रख दिया, बेटा कोई आना नहीं देना। उसी समय में विष्णु आ गए, कहा कि मैं वैकुंठ से विष्णु आया हूं, शिवजी से मिलना है। बोले वो तो विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तांडव नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। बोले जाकर कह दो ना विष्णु जी हम आए वैकुंठ से। बोले ठीक है, हम कह देंगे। नंदी ने कहा शिवजी को, महाराज भगवान वैकुंठ से विष्णु आए हैं। तुरंत भगवान शिव ने नाचना बंद कर दिया, अभ्यास बंद कर दिया, और दंती त्वक था वहीं, हाथी की जो चमड़ा था उसको पहाड़ से कमर में लपेट ली, तो एक सर्प को उठाया, उसको बांधा कमर में। आप लोग पॉइंट पहनने के बाद बेल्ट लगाते हो ना, उसको चमड़ी को बांधा और सर्प से कस के रख दिया, और क्योंकि नाचते समय में जटा खोला था, एक सर्प उठाया, आप लोग रबड़ बैंड बांधते हो ना, फाड़ से उसको सर्प से बांध दिया, और थोड़ा सा राख था वो लपेट लिया, पाउडर लगाते हो ना आप लोग, पूरी मेकअप फटाफट पाउडर लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया और गले में सृगपि निर्करोति परिकर और सर्प का माला, मनुष्यों के खोपड़ी की माला फटाफट तैयार करके बाहर निकले और वहीं पर भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ था उसने देख लिया, किसको? नागों को, शिव जी के जटा में, गले में, कमर में, जहां भी सब सर्प ही सर्प, नाग ही नाग। जब गरुड़ ने देखा तो सर्पों की तो हवा गुल, डर के मारे कायल हो गए। अब क्या करें, इसने देख लिया, अब तो हमको तो खाएगा, वो जिंदा खाएगा, मार डालेगा। तो गरुड़ ने जब एक सर्प को झपट मारने की कोशिश की, सिर में था जो सर्प, उसने गरुड़ ने झपट मारने से पहले ही यहां जो चंद्रमा लगाया था उस पर फण मार ली, इसने सर्प ने। क्या सोचकर, ये मुझे मारेगा, इसके मारने से पहले मैं अमृत पान करूं तो मैं मर ही नहीं सकता हूं, चंद्रमा तो अमृत, पार से फण मारा, अमृत पान कर ली। उस झटके से चंद्रमा में से अमृत टपक पड़ा, कहां तो जो माला थी शिवजी के गले में मरे हुए खोपड़ियों का, उसमें पड़ा तो सब जिंदे होकर नाचते हुए हंसते हुए चल पड़े वो, क्यों, अमृत का स्पर्श हो गया। यहां तक तो ठीक था, वो जो अमृत टपक गया कहां कि वो जो हाथी का छाला चमड़ा उसमें गिर गया, एक बूंद यहां से फट गिर गया तो सर्प तो पहले भाग चुका था गरुड़ से डर के मारे, और वो चंद्रमा का अमृत हाथी के चमड़ी में गिरा तो हाथी तो जिंदा हो गया, वो तो गया घास चरने, भगवान शिव को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। दिगंबर आहा गए मस्ती से विष्णु से हाथ मिलाने, महाराज आपने कष्ट किया, हमको ही बुला लिया होता वैकुंठ, आप वहां से यहां आए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुरा के हंसने लगे, हे भोले बाबा, ये क्या किया आपने, कम से कम कपड़ा तो पहन लिया होता, ये नंगे धड़ंगे क्या है, इतना भी क्या हतार थी, क्या जल्दीबाजी थी, हम प्रतीक्षा करते कपड़े कपड़े पहन के आते आराम से। बोले नहीं नहीं कपड़ा पहन के आया हूं। अरे देख लो कपड़ा है कि नहीं, देखा तो हाथी तो वहां गया, वहां चल रहा, ये क्या हो गया। तो भगवान शिव को बड़ा लज्जा आई विष्णु के सामने दिगंबर होकर खड़े होने में, और संकोच के मारे गुफा के अंदर फिर भाग गए। तो ऐसे जो भगवान शिव है हम सबका कल्याण करे, कवि ने ऐसा सुवासित कविता लिखी है। भावना ही तो है, बोले है ना वो बेचारा, उनको पता ही नहीं है। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल भेदी न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण असन। भोजन के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है, समुद्र मंथन किए बिना आपके लिए प्रिय भोजन लाना संभव नहीं, समुद्र मंथन हम नहीं कर सकते। और माला के लिए पाताल भेदन करना पड़ेगा, पाताल जाकर नागों को उठाकर लाना पड़ेगा, तभी आपके लिए माला बढ़िया बन सकता है, और पाताल जाने की क्षमता हमारे में नहीं है। वस्त्र बढ़िया वस्त्र के लिए वन में मृगया शिकार खेलने के लिए जाना पड़ेगा, हाथी को मारना होगा, शेर को मारना होगा, बागम्बर या दंती त्वक लाना पड़ेगा, तभी आपको वस्त्र का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। वो भी हमारे से संभव नहीं है। कथम सपर्याम विधेयम कथया, आप कहिए कि आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूं। तो फिर तू क्या कहना चाहता है महाराज? बोले एक काम मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर सकता हूं और हृदय रूपी घर आपके लिए अर्पण कर सकता हूं। तो आप हृदय रूपी घर में निवास करें और बुद्धि रूपी कन्या से खूब सेवा लें, इसके अलावा और तो मैं कर नहीं सकता हूं महाराज। अब कदाचित आपकी कृपा से पूजा द्रव्य आदि मैं लाऊं भी, तो भी फिर आपकी पूजा मैं करूं कैसे? 86वां श्लोक। पूजा द्रव्य समृद्धयो विरचिता पूजा हम कथम कुर्महे। मान लो कि पूजा के सारे सामग्रियों को मैं विरचित यानी सब तैयार करूं भी, उपलब्ध हों भी, तो मैं पूजा करूं कैसे आपकी? क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले आवाहन करना पड़ता है और आप सब जगह व्यापक हैं, तो आपके आवाहन कैसे करें? आवाहन मंत्रों का कोई प्रयोग ही नहीं है। दूसरी बात, आवाहन के बाद आसनम, तीसरे नंबर में पादयो पाद्यम समर्पयामी, पांव धोना पड़ेगा और पांव आपका पांव कहां है कहां पता ही नहीं है। तो मैं पाद्य बना के रखूं तो भी वह आपका चरण कहां है? पहले चरण का पता तो चले। आज तक आपके चरण कहां है अब किसी को पता ही नहीं। चरण पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पाताल गए तो भी आपका चरण नहीं मिला। तो उनको चरण नहीं मिला तो फिर मैं आपको चरण में पादयो पाद्यम समर्पयामि कैसे करूंगा? मैं पूजा द्रव्य बना भी लूं तो चरण का पता चले तब न चरण में अर्घ्य चढ़ाएं, पाद्य चढ़ाएं। बोलो कथम कुर्म है पूजाम, आपकी पूजा मैं करूं कैसे? पक्षित्वम च वा कीटित्वम अपि वा। और दूसरी बात, पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, आपका हाथ का पता चले तब न फिर अर्घ चढ़ाए। निर्विशेष का हाथ कहां है और अर्घ कहां चढ़ाए? बोलो। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, मुख में आचमनीय जल देना चाहिए। पहले तो सिर का पता चले, मुख का पता चले, तब ना आचमन अर्पण करें। सिर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण करके ऊपर गए, ब्रह्मा ने सिर का पता नहीं लगाया। चरण के पता लगाने के लिए विष्णु कीड़ बनकर वराह रूप धारण करके पाताल में गए, चरण का उनको ही पता नहीं चला। पक्षित्वम च वा कीटत्वम अपि न प्राप्तम मया दुर्लभम। विष्णु और ब्रह्मा को दुर्लभ हो गया आपका, विष्णु को चरण दुर्लभ हुआ, शिव को मुख दुर्लभ हुआ, तो पाद्य कैसे अर्पण करें? आचमनीयम कहां अर्पण करें? बोलो। जाने मस्तक मंग्री पल्लव मुमा जाने, हाँ न जाने, पक्षित्व धारण करके ऊपर जाने पर भी ब्रह्मा जी ने मस्तकम न जाने और कीटत्व धारण करके विष्णु पाताल में जाने पर भी अंग्री पल्लवम न जाने, चरण का पता नहीं लग पाए। जब उन लोगों को पता नहीं चला तो अहम विभो ते अहम न जाने, तब मैं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे पूजा करूं आपकी। न ज्ञातम ही पिता महे न हरिणा तत्तेन तद्रूपिणा। जब उन लोगों के द्वारा ही आपका स्वरूप का पता नहीं चला है, मान लो पाताल से मैं सर्प लाऊं भी तो आपका गला पता चले तब न माला पहनो। मान लो मैं जंगल से हाथी के चमड़ा लाऊं भी तो आपका मध्य देश कटी देश पता चले तो मैं वस्त्र पहनाऊं। मान लो कि मैं गंगा का जल ले आऊं तो आपका चरण का पता चले तो धोऊं। मान लो कि मैं मलयाचल का चंदन लेके आऊं तो आपका ललाट का पता चले तब चंदन अर्पण करूं, अक्षता अर्पण करूं। निर्गुणस्य कुतो पूजा, निर्गुण निराकार की मैं पूजा करूं कैसे करूं। इसलिए हे महाराज, एक ही चीज मैं कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर देता हूं और हृदय रूपी घर आपको लिए अर्पण कर देता हूं, खाली कर देता हूं। आपको कदाचित लगता है कि वह हृदय छोटा है, इतना साफ सुथरा नहीं है, तो वहां उस हृदय में जो मेरी अनात्म वासना है, संसार वासना है, वो कचरा है, वो सफाई कर कहोगे तो मैं सफाई कर सकता हूं, साफ सुथरा करके वो कमरा इतना बढ़िया बनाकर रख दूंगा कि आप आओ बैठो और मेरी बुद्धि कन्या को सेवा करने का मौका दो। कल के श्लोक में कहा था कि आप पहाड़ों में विचरण करते हो, यमराज को आपने लात मारी थी तो आपका चरण बहुत दुख रहा होगा, तो मुझे हाथों से संवाहन करने का अवसर दो। अब आप कहते हैं चरण का ही पता नहीं है। ले जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
6: ओम नमः शिवाय।
7: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
6: ओम नमः शिवाय।

0: गुरु शिव महिम्न स्तोत्र श्लोक नंबर 22।
1: रजानाथम नाथ प्रसमबभिकम स्वाम दुहितरम

श्री पुष्पद दंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सिर्फ अपनी ही महिमा का ख्याल नहीं रखते, आप तो महिमावान है ही। जैसे सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, महिमावान है, प्रकाश है, तेज है, अपना सौंदर्य है, पर अपने ही सौंदर्य की सिर्फ सूर्य देवता चिंता नहीं करते। क्या करते हैं? पूरा हमारा जो ऋतु चक्र है वो चलाते हैं। वो कहीं और अंतरिक्ष में चले जाते तो उनको तो किसी की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके बैठ सकते थे। हमारे ही अंतरिक्ष में क्यों आए? क्योंकि हमेशा परमात्मा देव है, वो परोपकारी होते हैं। हे शिव जी, आपका इतना महिमा है, आप प्रचंड है, उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है, स्वयं परमात्मा है, पर आपका महिमा आप तक ही सीमित नहीं है। आपके शरणागत जो कोई भी भक्त है, आपका एक बार भी स्मरण किया, नाम किया, उच्चारण लिया, तो ऐसे सद्भाव वाले भक्तों की आप रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है, उनकी रक्षा शिव जी ने किस प्रकार की लीला करके की, उसका वर्णन किया है। यानी हमसे कोई पाप हो, दुराचरण हो, गलती हो, रजस और तमस गुण से किए गए कोई भी कर्म हो, प्रमाद हो, ये आत्मविद्या ग्रहण करने में कभी प्रमाद हो जाए, तो इन सब जो चीजें हैं उससे बचाने के लिए भी शिव रूपी गुरु और गुरु रूपी शिव जो है वो हमेशा प्रवृत्त होते हैं। तो यहां किस प्रकार से शिवजी ने ब्रह्मा जी को तारने का प्रयत्न किया है वो हम देखेंगे। प्रजानाथम नाथ, आप कैसे हैं? देखिए, अब उद्बोधन है वो बदल गया। भगवद गीता में ये देखने को मिलता है बहुत बहुत सुंदरता से। हे पार्थ, कभी प्रोत्साहन करना है तो कुछ अलग बात करते हैं, महारथी कह देते हैं, महाभागो। कभी अर्जुन कह देते हैं कि यू आर जस्ट अर्जुन, ये शरीर मन बुद्धि का संगात है, मेरी कृपा से चल रहा है, याद रखो। तो उद्बोधन, तो यहाँ क्या कहा कि प्रजानाथम, आप सिर्फ नाथ नहीं है, प्रजा के भी उद्धार करने वाले प्रजानाथ है। यहाँ जो आख्यायिका दी गई है, ये जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार का वर्णन है कि ब्रह्मा जी की एक संध्या नामक पुत्री तो उत्पन्न हो गई। अब ब्रह्मा जी का क्या है, ऐसी गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि उत्पत्ति का भार उनके हाथ में है, तो उत्पत्ति जितनी भी उनसे उत्पत्ति हुई वो सब उनकी हो गई ना। अभी उत्पत्ति हुई तो वो क्या हो गए, वो उसके आदन पिता ही हो गए, माँ ही हो गए वो चीज के। अब सब कुछ ही वो व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है तो वो करे भी क्या। तो संध्या नामक पुत्री भी उत्पन्न हो गई तो उनसे उनको आसक्ति हो गई, उनसे थोड़े आकर्षित हो गए। अब परमात्मा को तो पता है कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर दी मदर और फादर ऑफ दैट क्रिएशन। संध्या नामक पुत्री से कामवश होके ब्रह्मा जी जब तत्पर हुए उन्हें पाने के लिए, तो उन्होंने डर से और अपने पिता को बचाने के लिए भी, क्योंकि ये जो कार्य है उससे मेरे पिता का नाम बिगड़ सकता है, बदनामी हो सकती है, तो ब्रह्मा जी को बचाने के लिए हरिणी का रूप ले लिया, मृग का रूप ले लिया संध्या ने, और दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने उसे पाने के लिए खुद मृग का रूप ले लिया और दौड़ने लगे। अब पुत्री ने तो बचाने का प्रयत्न किया पर उसमें वो असफल रही। अब कौन आता है? तो अब शिव जी आते हैं कि ये तो मेरा शिष्य है, मेरी ही उत्पत्ति से, मुझमें से ही वो उत्पन्न हुए हैं, और यही जब प्रजा के जो भी रीत रिवाज है उसी का उल्लंघन ये ब्रह्मा जी ही करने लगे तो प्रजा को मैं कैसे बचा पाऊंगा। तो शिव जी ने एक धनुष जो है वो धनुष का प्रयोग करके उनके ऊपर उनका प्रहार करने चले। तो ब्रह्मा जी ने शिवजी से बचने के लिए क्या किया, वो आकाश में चले गए। उन्होंने रुमरुग से रूप बदल लिया, नक्षत्र का रूप कर लिया, तारों का रूप कर लिया, और वो मृग शीर्ष नक्षत्र बन गए। देखिए, आप नक्षत्र देखेंगे
कोई ऐसी विद्या जानते होंगे आप नक्षत्रों की, तो मृग शीर्ष उसका मुख मृग जैसा है, मृग के शीर्ष जैसा है, ऐसा नक्षत्र बन गए। तो शिवजी ने क्या कहा, शिवजी ने अपना बाण जो है वो भी नक्षत्र, अभी ब्रह्मा जी नक्षत्र बन सकते तो शिवजी के लिए क्या इम्पॉसिबल है। हाँ हम क्या करते हैं, हम मुखौटा पहन के आते हैं, ये शिव जैसे गुरुओं के पास मुखौटा पहन के आते हैं, इनको क्या पता लगेगा हम क्या है कौन है। हा? अभी कैसे पता नहीं लगेगा, ये सोचने की बात है। जैसे है ऐसे उपस्थित हो जाएंगे तो गुरु को थोड़ा कष्ट कम पड़ेगा, नहीं तो उनको भी आपके जैसे बहु रुपया बनने में देर नहीं लगती है। हा? वो भी बहुत सारे मुखौटा रखते हैं, जैसे हम वैसे वो मुखौटा पहन लेते हैं, हमने निकाल दिया तो वो भी निकाल देंगे। हाँ, और अपना जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है वो दिखा देंगे, पर क्यों गुरु का ब्रह्म स्वरूप नहीं दिखता है, जितने मुखौटे हमने पहने हैं उतने सामने आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो शिवजी क्या बन जाते हैं, शिवजी आर्द्रा नक्षत्र है। तो शिव आर्द्रा नक्षत्र है ना, वो तीर के समान है, तो अभी तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। यानी क्यों अभी तक नहीं छोड़ते हैं, ये चीज जो है, ये जो काम है, ये जो तत्परता है विषयों, ये क्या बता रहे हैं भाई, विषयों के प्रति तत्परता बता रहे हैं। विषयों के प्रति आकर्षण जो है वो अलग बात है, विषयों का विचार अलग बात है। क्यों, क्योंकि वो आपकी कामना के अनुसार, प्रारब्ध के फल के अनुसार आते जाते रहेंगे विचार, पर उसमें जो हम पागल हो जाते हैं, तत्परता जो हो जाती है, तत्परता निकाल डालने के लिए और हमेशा के लिए, ये नक्षत्र तो हमेशा के लिए ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने तो शरणागत भी हो गए, माफी भी मांग ली, सब कुछ हो गया, पर शिव जी कहते हैं कि ये देख के आपके बाद वाली आपकी जो प्रजा है, हम सब ब्रह्मा जी है। क्यों, क्योंकि उनकी ही प्रजा है तो उन्हीं के गुण आ गए। तो भाई जो पिता में गुण है वो पुत्र में होते ही है, मैनिफेस्ट हो या न हो वो अलग बात है, पर होते तो है ही। तो इस डर से कि कहीं आपकी प्रजा भी इस प्रकार ये जो मर्यादा है, सीमा है, उसका उल्लंघन न करे, इसीलिए ये तीर बनके मैं दिखता ही रहूंगा नक्षत्र के रूप में। क्यों, क्योंकि हम सतर्क हो जाए, तुरंत ये बात सुनी है तो याद आ जाए कि हाँ भाई ये ब्रह्मा जी के पीछे तीर लेके कृष्ण शिव परमात्मा है, तो मैं भी जब कामनातुर, मैं भी जब वासना से उद्धृत हो जाऊंगा और वासना के पीछे जब मैं दौड़ूंगा, तब याद रखना शिवजी रूपी। देखिए वासना के पीछे दौड़ना बुरा नहीं है, एक गुरु करना जो शिवजी जैसा हो, जो आपके पीछे दौड़े और आपको रुकवा दे। वासना के पीछे मैं न दौड़ूं, ऐसी आइडियल सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। आप कोई हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाएंगे तो भी मन तो दौड़ेगा ही, उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, एक शिव जैसे गुरु के पास उपसन्न हो जाना है। कोई ऐसे व्यक्ति तो जीवन में रखना जो हमारे पीछे दौड़ सके तीर लेके, हाँ तो ही उद्धार का कारण बनेगा। ऐसे पुष्पदंत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी क्षमा करने वाले, ब्रह्मा जी का भी इतना ख्याल रखने वाले आप हैं, तो मैं भी आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरा भी ख्याल रखना। हे गुरु, गुरु के पास उपसन्न होते वक्त इतना ही ख्याल रखना कि हे गुरु मेरी जब कोई भी ऐसी गलती हो तो मेरे पीछे भी बाण बन के आप आना, ऐसी मैं आपको ये अदृश्य प्रार्थना कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी का दृष्टांत लेके पुष्पदंत जी ऐसे फिर शिव जी की स्तुति करते हैं। ये स्तुति करने के बाद फिर शिव जी कैसे हैं भाई, जो काम को दूसरे के काम को मार सकता है वो खुद कैसे होते हैं, इतना तो सोचिए ना। हाँ, खुद तो निष्काम ही होंगे ना, कामना से पर ही होंगे। हाँ, कामना से पर है तो फिर ये पार्वती जी है उनके साथ, और वो भी अर्ध शरीर है, अर्धांगिनी है। पार्वती जी को तो शंकर भगवान ने आधा शरीर में जगह दे दी है, तो ये कैसे हो सकता है, वो कुछ बात बताओ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ श्री पुष्पदंत जी बताते हैं कि देखिए, जो काम को मारने वाला होता है वो कामी नहीं होता है, आप उनका बाह्य रूप देख के ऐसी गलतियां मत करना। तो कहते हैं ये मैं इसीलिए कह रहा हूं।

तो बोले पार्वती जी है, उमा है, सती, जो पंचाग्नि तप करके शिव जी की आराधना करके उन्हें वर, उनको वर की जगह पाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। तो पार्वती जी का जो सौंदर्य है उससे सुंदर कोई भी स्त्री का सौंदर्य इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में नहीं है, ये जान लीजिए। तो कामदेव को लगा कि यहां पार्वती जी है, सर्वांग सुंदर, बाह्य और आंतरिक भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है, अतिशय शुद्ध है, शिवजी के अलावा कोई भी प्रकार की लेश वासना उनके भीतर नहीं है, और उनके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं, ये कामदेव मेरे वाण, तो शिवजी को प्राप्त करने में सरलता है। उनको रिझाने के लिए काफी है इतना कि पार्वती जी और मैं, बहुत हो गया। तो कामदेव जी ने अपनी वसंत ऋतु से, सुगंधि से, नृत्य से, गान से, सब तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश की, पर यहां तो भस्म, ये एक तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र सिंबॉलिक है कि काम जो है, सब विषयों की आसक्ति काम में ले ली जाती है, तो ये जो काम का भोग है वो मात्र ज्ञानाग्नि से ही जल सकता है और किसी भी तरह नहीं। आप दमन करिए, शमन करिए, सब थोड़ी देर के लिए रहेगा, पर फिर क्या है, वासना जो भीतर है वो, उसका दहन करना चाहिए। बीज जो है, देखिए, बीज को आप छुपा के रखेंगे, बोतल में बंद करके रखेंगे, कागज में बंद करके रखेंगे, 5 साल के बाद भी जब बोएंगे तब अंकुर तो होगा ही, पर वो बीज को जला दिया तो अब अंकुर फूटने की शक्यता नहीं, बताया नहीं है, 100% नहीं है। आप वो बीज के साथ पूरी जिंदगी जी सकते हैं। बीज को जला देना है, जलाने का काम सिर्फ अग्नि ही कर सकती है, इसीलिए ज्ञान को अग्नि से संबोधन किया जाता है। तो यहां कामदेव जी तो शंकर भगवान के संकल्प मात्र से भस्मीभूत हो गए। अब भस्मीभूत तो हो गए, शिव जी को तो पता ही था कि ये मुझे उत्सुक, प्रेरित, पुत्र के लिए प्रेरित करने के लिए ये सब किया है, पर इन सब में ये जो सती जो है, उमा जो है, उनका तो कोई दोष नहीं है, वो तो मेरी भक्त है, शिष्य है, और मुझे पाने के लिए, सिर्फ मुझे पाने, मेरे सिवाय उनके जीवन में और किसी की भी कोई भी कीमत नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है, तो उनका तो कोई दोष नहीं है, और उनका दोष नहीं है मेरे विरह में वो तप्त न हो, इसीलिए मैं उन्हें अवैति ताम मध्वा बतमरद मुग्धा युवतयः, क्या करते हैं कि उनका जो विरह है, जो संताप है, विरह यानी उत्सुकता, कौन सी उत्सुकता, भाई शिव को पाने की, यानी मेरे खुद के स्वभाव को पाने की उत्सुकता, मेरे स्वभाव को पाने की उत्सुकता है। ये सिंबॉलिक आधा शरीर ही क्यों दिया, शिव तो पूरा भी दे सकते तो भी शिव रहते थे, तो क्या, क्यों आधा दिया, कि भाई ये वाणी से, ये मन से, ये बुद्धि से, कर्म से, जितना भी आप परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे वो आधी ही रहेगी, तो शिव का आधा भाग जो है वो तो अनुभव ही करना पड़ेगा, वो आंतरिक अपरोक्ष अनुभूति का विषय है। हाँ, तो हमारे जो ये जब प्रयत्न है वो कैसे है, आधे यानी कम है, कुछ कम है, पूरा का पूरा तो हम बताने की चेष्टा करेंगे, हम 100% बताने की चेष्टा करेंगे, तो भी आधा का आधा कुछ अनकहा रह जाएगा। ये जो अनकहा रह गया वो शिवजी का दूसरा आधा शरीर है, वो अनुभूति मात्र है, वो अनुभूति से जाना जाता है। तो शिवजी कृपा करते हैं कि मैं पार्वती, मेरे विरह को प्राप्त न हो, इसीलिए मैं उन्हें मेरा आधा यानी मेरा जो सगुण रूप है वो मैं बता देता हूं। देखिए, परमात्मा के सब शास्त्र में, वेद में परमात्मा के सगुण स्वरूप की चर्चा 100% हुई है। आप किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, हाँ, सगुण स्वरूप में कोई हर्ज नहीं है, उसे बराबर आत्मसात कर लिया, जान लिया, प्राप्त कर लिया, तो निर्गुण निराकार बाद में शुरू जो होगा उसमें आप बहुत ही सरलता से जा सकेंगे। ये पूरा थोड़ी सांकेतिक भाषा से, थोड़ी मैच्योरिटी से ये समझने की आवश्यकता है। सिर्फ सगुण ही काफी नहीं है और सिर्फ निर्गुण ही काफी नहीं है, परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को, अंतर अनुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, ये जानने के लिए सगुण द्वारा परमात्मा के जो रूप है, जो लीला है, जो क्रीड़ा है।

है जिसमें हम रह रहे हैं भोग रहे हैं तो उसे जानने की हमारी फर्ज है, हमें वो जानना ही चाहिए। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि मेरे सगुण स्वरूप को भी आप जानने लगे तो मैं आधा जो है वो आपको मिल ही जाऊंगा, मेरा अंग बना के आपको रखूंगा। और जब आप किसी को अपना अंग बना लेते हैं, देखिए ये कपड़ा भी है जड़ है, उसको जब आप परिधान करते हैं तो वो आपका अंग हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। आप कोई भी सफारी में चले जाइए प्राणियों को देखने के लिए, हाँ, तो आप हाथी के ऊपर सवार होके जाते हैं तो क्यों वो शेर जो है, वो बाघ जो है, वो क्यों आपके ऊपर नहीं आता? हाथी को तो वो नहीं मारते, हाँ, बड़ा प्राणी है, डरते भी है हाथी से, पर आप तो अनजाने हैं, आप तो मनुष्य है, आपके ऊपर वो क्यों नहीं आता है वो प्राणी? वो शेर जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर बैठा हुआ जो मनुष्य है वो हाथी का ही एक भाग है, हाथी का ही एक अंग है। उसकी साइकोलॉजी ऐसी है और ये रिसर्च किया गया है, इसीलिए हाथी के ऊपर बिठा के लिया जाता है, नहीं तो कौन जाता था देखने के लिए? हाँ, टीवी में देख लेना काफी है, कौन खुद की जान लेने को जाता था? पर ये दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट कि ये हाथी का ही एक भाग है महावत और आप सब जो बैठे हुए हैं वो, और इसीलिए हम जिंदा वापस आते हैं वहां से, नहीं तो कोई शक्यता ही नहीं है। इसी प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है कि जब ये वस्त्र भी आप अंगीकार करते हैं तो ये आप जब तक आप अंगीकार किए हुए हैं आपका ये भाग बन जाता है कि नहीं? बोले हाँ बन जाता है। क्यों बन जाता है? अरे भाई आप रास्ते में चलेंगे, नीचे पानी गिरा है तो कपड़े को उठाते हैं कि नहीं? ये तो जड़ है, इसे क्यों उठाते हैं भाई? हाँ मेरा भाग है अभी तो, ये दिस इज पार्ट ऑफ, ये जड़ वस्त्र भी मेरा भाग है। कोई चाय देगा, पीते पीते कुछ गिर गया, अरे अरे गिर गया, धो धो धो डालो, हाँ दौड़ के, फिर क्यों धो डालते हैं भाई? जड़ वस्त्र है, मेरा भाग है, मैंने अंगीकार किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब शिव जी ने आपको स्वीकारा है, अंगीकार कर लिया है, तो आपके ऊपर दाग गिरे तो पोछने की जवाबदारी भी उसकी है, दाग नहीं गिरे वो जवाबदारी भी उसकी है, हाँ वो आपका सब वहन करता है। यही है कृष्ण परमात्मा ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम, वो इस प्रकार आप मेरे बन जाइए। हाँ तो एक जड़ कपड़े को भी इतना ध्यान रखा जाता है तो हम पूरे चेतन संघात है, हमारा ध्यान वो क्या गुरु वो परमात्मा नहीं रखेंगे, पर हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ये उमा जी, ये पार्वती जी की तरह मात्र शिव, शिव यानी वही ब्रह्म, वही परमात्मा, कोई भी आपका आराध्य देव जो ईश्वर है, आत्मा है, सचराचर व्यापक जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म की मात्र। और इसीलिए यही बात उपनिषद ने कही है, तम एव एकम आत्मानम विजानत, ये ऐसे ही नहीं कहा है, वो ही एक ही आत्मा के बारे में एव एव करके बता दिया कि और कोई भी चीज को प्रायोरिटी नहीं दो, प्रायोरिटी की लिस्ट की ना बोली है यहाँ तो, फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट परमात्मा को रखा, सेकंड होना ही नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ कहना है। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, यम एव एष उसी को ही प्राप्त करने की जिज्ञासा है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुन्स्वाम, तो ये विवृणुते तनुन्स्वाम ये अर्धांगी बना दिया, अर्धांग बना दिया। अब आगे कहते हैं, देखिए कल हमने जो बात की थी ये आडंबर की बात की थी ना हमने, शिवजी का आडंबर क्या किया था? पृथ्वी का रथ बना दिया, पहिए बना दिए, हाँ, तो और दक्ष प्रजापति के बारे में जब वो लग्न के प्रसंग पे गए तब ऐसा रूप था कि दक्ष प्रजापति भी थोड़े हैरान हो गए थे। तो यह कहते हैं कि यही जो परमात्मा का जो रूप है वो रूप की अब चर्चा करते हैं। देखिए परमात्मा ये निर्गुण निराकार आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव जान लिया तो ही आप सगुण साकार का जो स्वभाव है उसमें तल्लीन तत्पर होके वो परमात्मामय पूरे के पूरे हो सकते हैं। ये ख्याल कीजिए, पहले जानना है, पहले जो हम जानते हैं वो जिज्ञासा से उत्सुकता से जानते हैं, हाँ हमारी वासनाओं के साथ मिलके वो परमात्मा को जानते हैं, थोड़ा सगुण थोड़ा निर्गुण। पूरा जान लेने के बाद फिर से आप जब सगुण को जानेंगे तब मजा आएगी कि ओहो ये तो मेरा ही वैभव, मैं अन्य प्रकार से देख रहा हूँ, मारो मेरे भीतर जो परमात्मा है, मेरे भीतर जो ब्रह्म है वो कैसा
है वो मैं देख रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब निर्गुण निराकार में आप प्रस्थापित हो गए, तो तब आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुझे क्या पहनाया जाता है, क्या भोग लगाए जाते हैं, मेरा वैभव है, जरा देखने को तो जाऊं। यात्रा का प्रकार, यात्रा की भावनाएं ऐसे बदलती है, पर यू हैव टू बी विद दैट रियालिटी। हाँ, ये न कहना प्रकार है ना, उसी के साथ संपर्क बना दीजिए परमात्मा को, और कुछ नहीं, उसे अपना प्रिय पात्र, प्रिय बना लीजिए, तो ही ये हो सकता है। तो यहाँ श्री पुष्पदंत जी इतनी सारी परमात्मा की बातें करते करते उनके प्रेम में इतने आ गए कि उनका जो भी वो बाह्य सौंदर्य है वो भी उन्हें अब उत्सुक और आनंदित करने लगता है, और जब भीतर से आनंद आता है ना तो बांटने का अपने आप मन होता है। तो यहाँ कहते हैं,

0: कलमसी।
1: बोले कि आपकी क्रीड़ा, आपका आडंबर, आपका मेकअप, वो सब देखकर तो ऐसा ही लगेगा कि ये सब चीजें लोक वाक में तो सब अमंगल है ऐसा ही लगता है, पर निश्चित ही शिव स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप आप जो है, ज्ञान स्वरूप जो भी जिसने आपका ज्ञान पा लिया, वो जो वो हो गए हैं ऐसे ज्ञानी, वो जो भी कुछ परिधान करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो लगता अगर अमंगल भी लगता हो तो भी वो उनके परिधान करने से उसका जो अमंगलत्व है वो चला जाता है। तो अमंगल भी जिसके संपर्क से मंगल हो जाता है, ऐसे हे परमात्मा मेरा मन भी अमंगल ही है ना। मन में कितनी काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, अभी नहीं है तो पहले होंगे, अभी चित्त शुद्ध हो भी गया होगा, कितने साल तक हम आपको बोलते रहेंगे आप ऐसे हैं ऐसे हैं। अब ऐसे नहीं भी है, हम मान भी लेते हैं नहीं है, आप प्रयत्न कर रहे हैं रोज सुबह आके चित्त शुद्धि का, पर पहले जो हो गए तो अमंगल के थोड़े दाग तो रह गए हैं ना भाई। हाँ, बुद्धि में थोड़ा अहंकार रह गया है, कभी तो किसी का अपमान किया होगा, कभी तो प्रतिष्ठा का अहंकार किया होगा, कभी तो शरीर से किसी को कष्ट दिया होगा। हाँ, तो ये शरीर मन बुद्धि में जो अमंगल बैठ गया है उसका क्या, बोले शिव जी से संपर्क कर लीजिए, वो शिव तत्व, वो गुरु तत्व से संपर्क कर लीजिए तो अमंगल भी मंगल हो जाता है, क्योंकि हम अपने एक एक अमंगल को लेके मंगल को कन्वर्ट करने बैठे ना तो हजारों जन्म कम पड़ेंगे। यहाँ क्या करना है, बस उसी से संपर्क कर लो तो अमंगल भी मंगल हो जाता है। ये कैसा है, जब कैलाश यात्रा मानसरोवर से लोग आते हैं ना, तो क्या है, मानसरोवर का जल लेके आते हैं ना। हाँ, अभी यहाँ कोई जल लेके आया तो इतने हम सबको दो दो बूंद दे सके उतना जल उठा के थोड़ी ले आएंगे, सब पूरी बिरादरी को देना है, सब देना है। और आप जाके आए और मैं आपको बोलूँ कि भाई आप तो मानसरोवर जाके आए, जल लाए हैं, तो बोले हाँ लाए हैं, तो कल ले आना प्रवचन में भाई, हमें सबको देना है, तो बोले ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतने लोगों का जल में उठा के 20 किलो ही अलाउड है, उसमें मैं कैसे, मैं तो इतना ही जल लाया हूँ तो क्या करूंगा। तो बोले कोई चिंता नहीं, आप जितना लाए हैं उसमें से मुझे एक ही चम्मच या दो तीन बूंद, एक बूंद भी दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, हम यहाँ रख देंगे पूरा जल का जो है वो घट रख देंगे जल से भरा हुआ, और फिर उसमें आपका लाया हुआ एक बूंद भी डाल दिया तो पूरा जल क्या हो गया, पूरा जल मानसरोवर हो जाता है। बस इसी प्रकार ये पूरा जो हमारा ये शरीर मन बुद्धि का संगात है, पूरा जल है वो अमंगल हुआ हुआ है, कलुषित हुआ है, दोषित है, तो क्या करना है, सिर्फ एक शिव, एक संपर्क, एक गुरु का, कोई संत का, ज्ञानी जनों का सानिध्य कर लिया, संपर्क कर लिया, संपर्क याने उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान आत्मसात करने की थोड़ी चेष्टा भी की तो अमंगल तुरंत ही मंगल हो जाता है। जैसे आपके यहाँ के पानी जो है वो अभी के अभी इसी क्षण मानस का जल बन सकता है, इसी प्रकार। तो यहाँ ये परमात्मा कैसे है वो देखिए, रहते कहाँ है भाई, आपका शौक कहाँ है, आप रहते कहाँ है, तो बोले स्मशानेश्वा क्रीड़ा। हाँ, स्मशान में रहने वाले हैं। स्मशान में क्या है, स्मशान में कोई भी प्रकार की आसक्ति को रहने की जगह नहीं है। स्मशान में कोई भी, आप स्मशान में जाएंगे तो कोई भी प्रकार के विषय का चिंतन हो सकेगा क्या? हाँ, विषय का चिंतन नहीं होता है। क्या होता है, किसका स्मरण आता है, मात्र परमात्मा का ही स्मरण आता है, कोई भी विषय का चिंतन वहाँ नहीं होता। याने आपके घूमने फिर क्रीड़ा का स्थल क्या है, तो बोले जहाँ विषय नहीं है वहाँ आप है, जहाँ प्रलोभन नहीं है वहाँ आप है, जहाँ लौकिक सांसारिक बातें नहीं है वहाँ आप है। अब स्मशान से इसी जगह में जाके आप सांसारिक बातें करेंगे तो कोई बाजू वाला है वो भी आपको रोकेगा कि अभी इधर क्या ये बात कर रहे हो, बाहर निकल के, अभी इधर नहीं। तो सांसारिक बात से परे है, यहाँ भी आते हैं सत्संग में भी आते हैं तो सांसारिक बातों से दूर रहना है। हाँ, ये सीखना है स्मशानेश्वा क्रीड़ा। और आपके साथ कौन कौन है, तो बोले भूत और प्रेत, भूत और पिशाच जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। याने ये परमात्मा भूत और पिशाच के साथ क्यों रह रहे हैं, जरा सोचिए। एक बात तो कई बातें निकलती है अगर विचार करने बैठे तो, पर एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ज्ञानी जन है, गुरु जन है, उनके साथ रहने वाले अगर कोई भूत या पिशाच जैसे हो, भूत या पिशाच यानी क्या कि आपको ऐसा लगे कि ये ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा भी हो, तो अगर वो ज्ञानी जनों के साथ घूम फिर रहा है तो उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हाँ उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, भूत हो या पिशाच जैसा हो, क्योंकि शिव ने उसका स्वीकार किया है, शिव ने उसको अपना मित्र बनाया है, फ्रेंड्स बनाया है, तो कैसे हो सकता है। दूसरा कि अगर हम भूत और पिशाच जैसे भी हो, सबसे भूत भूत किसको अच्छा लगेगा, मैं दो तीन भूत है आपको मुझे लगा देना है तो आप कौन कौन वॉलंटियर बनते हैं, हाँ 7 दिन में मैं कुछ तो मांग सकती हूँ ना आपसे, हाँ 2-3 भूत है मैं लगाना चाहती हूँ आपसे, कौन कौन वॉलंटियर बनेगा, हाँ बोले नहीं वो नहीं होगा, आप कहे वो सब कुछ कर देंगे पर ये चिपकने वाली, भूत को चिपकाने वाली बात नहीं करना, ये बात ये शिव ही ये हिम्मत कर सकते हैं। अरे शरीर मन बुद्धि के अच्छे संगात वाले श्रेष्ठियों को तो सब जान दिल से लगाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, हा? ये भूत को कोई लगा है? जो समाज में त्याज्य है, जो भय का कारण है, जिससे सब डरते हैं, जिसको कोई छूना या बात भी करना नहीं चाहते, सुबह सुबह भूत की बात करते हो, बात भी करना जो नहीं चाहते उसको भी गले लगाने वाले कौन है, शिव है। आप चिंता मत करना, अगर समाज से आप त्याज्य है, कोई आपको भूत भी समझ रहा है, कोई आपसे भयान्वित है, हाँ कोई आपका द्वेष कर रहा है, कोई आपसे दूर जाने की चेष्टा कर रहा है, तो चिंता मत करना, एक जगह तो परमानेंट ऐसी है जिसमें आप हमेशा के लिए स्वीकार्य है, और वो है गुरु, वो है शिव, वो है ज्ञानी संत, उनको सब कुछ स्वीकार्य है, हाँ उन्हीं का एक भाग है, इट इज पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा है, रामकृष्ण भगवान की जो बात है उस पर ये जो एक प्रसंग है वो याद आ गया अभी। उनके जो माता पिता, विवेकानंद जी के जो माता पिता थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो प्राप्ति के लिए शंकर भगवान जो है उनसे आराधना की और कहा कि हमें परमा हमें कोई पुत्र पुत्री प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो। तो दैव योग संतान हो जाते हैं, विवेकानंद जी नरेंद्र का जन्म होता है। अब ये नरेंद्र जो है वो देखो जो एक लक्ष्य होते हैं ना वो उनका क्रोध भी बहुत ही होता है, क्यों, क्योंकि वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो क्रोध का निरंतर उपयोग करते रहते हैं। तो ये छोटे बालक थे 8-10 साल के, पर परमात्मा का नाम स्मरण में भक्ति में ज्यादा मन लगा रहता था और पढ़ने में थोड़ा बहुत होशियार थे इसलिए थोड़ा कम वहां ध्यान रहता था। तो माँ बाप को तो बोलना ही पड़ता है ना, भाई पढ़ो, यहाँ जाओ, यहाँ ये करो। तो कोई ऐसा प्रसंग था जहाँ ये विवेकानंद जी नरेंद्र जी को
0: ओम नमः शिवाय यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shivam.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 1, Sukta
3: 25.
2: Thank you.

0: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோர்சஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. ஃபிலாசபிக்கல் டிஸ்கோர்சஸ் அண்ட் பெரிய புராணம் லெக்சர்ஸ் இன் தமிழ் will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Bhakti Shakti Shantava Salmi Matao Snimai Veno Aap Sarovand. Taittiriya Upanishad ka avlamban karte huye, उपनिषद कृतो शांति पाठ को लेकर के चर्चा की जा रही है, जिसमें अभी ये बतलाया कि जो एक एक गुण विशेष के अधिष्ठाता जो देवता, वह देवता हमारे लिए हमारे द्रुतों को दूर करते हुए और हमारे मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए हमें वह बल प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की गई। और अंत में कह दिया गया कि वायु जो है वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, वही ऋत ब्रह्म है, वही सत ब्रह्म है, ऐसा संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए कहा कि वह मुझ वक्ता की, मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात जो वक्ता की रक्षा होगी और श्रोता की रक्षा होगी तो क्या रक्षा होगी, मने श्रवण करने की सामर्थ्य वह हमें प्रदान करे। श्रवण तो हम सभी करते हैं, लेकिन श्रवण की सामर्थ्य, श्रवण का बल क्या है? तो श्रवण वास्तव में वह कहलाता है जहां पूर्व और परा का युक्तियों पूर्वक हम ग्रहण करते हैं, उसी का नाम है श्रवण। पूर्व पर दोनों का हम जो है समन्वय करते हुए और जो ग्रहण करते हैं तो ऐसी ग्राहक शक्ति हमें वह प्रदान करे, यही उसकी रक्षा। और वक्ता के द्वारा पूर्व और पर का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य को वह कथन करने में समर्थ हो, ये जो है वक्ता की रक्षा है। इसलिए कहा कि उस वक्ता की रक्षा करे और मुझ श्रोता की रक्षा करे। अर्थात वक्ता हमको तात्पर्य जो है वो समझा सके, वो कहने में समर्थ हो और हम उसके तात्पर्य को ग्रहण करने में समर्थ। क्यों? आप सुनते हो, वागर्था विवशम प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या संकेत किया? वाक और अर्थ दोनों कैसे हैं? तो कहने लगे दोनों साथ रहने वाले हैं, मिले हुए हैं। तो वाणी और उस वाणी का जो अर्थ है वो दोनों साथ ही रहते हैं। हम अर्थ का जैसे ही अनुसंधान करते हैं तो वो वाणी आ जाती है, और वाणी को हम उच्चारण करते हैं तो उसके साथ में वो अर्थ भी रहता, दोनों की मिलित अवस्था है। लेकिन आगे संकेत किया, जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से इस जगत का जो रचयिता, स्थितिकर्ता, प्रलयकर्ता जो परमात्मा है, और केवल परमात्मा नाम उसे कब दिया? तो कहा जब वह माया से प्रकृति से उपहित हुआ, तो जहां भी हम परमात्मा नाम लेते हैं, जहां भी हम ईश्वर नाम लेते हैं, या जहां जगत का कर्ता कहते हैं, या जगत का पालन करता कहते हैं, या जगत को लय करने वाला कहते हैं, तो वहां पर प्रकृति से रहित वह होता नहीं। जैसे शब्द और अर्थ की मिलित अवस्था है, वैसे ही प्रकृति और उस आत्मा की मिलित अवस्था में ही ये क्रिया होती है। और जहां पर सृष्टि होना, स्थिति होना, लय होना, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर नियम का प्रवाह है, ये नियमतः चलते हैं। तो जितने भी संसार के अंतर्गत कर्तृत्व हैं, कर्म हैं, उन सब में यह एक नियम है, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था, वो नियम कब होता है? तो तभी होता है जहां वाणी भी हो और अर्थ भी हो, और ऐसी वाणी हो जिसका कोई अर्थ न हो, तो वहां क्या फलित होगा? वहां कोई भी नियम जो है चल पाएगा नहीं। ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहां संकेत किया, वहां पर नियमबद्धता रहती है। अर्थात नियम का सीधा सा मतलब है कि जो भी यह अहम रूप से अपने को जानने वाला, मैं रूप से अपने को जानने वाला, जो भी यह जीव आदि शब्द से कहा जाने वाला प्राणी, वह जब अपने मैं को जानता है कि मैं हूं, तब क्या होता है? तभी उसमें किसी संकल्प या किसी इच्छा की स्थिति पैदा होती। जब तक मैं का बोध नहीं है, तब तक किसी प्रकार की इच्छा होना संभव नहीं। तो मैं हूं एक तरह से ज्ञान हो गया, अपने को जानना। और जब मैं अपने को जानता हूं कि मैं हूं, अब किस रूप में जानता हूं वो बात पृथक है। तो मैं हूं, और मैं जब हूं तो मेरे लिए चाहिए, जब मैं हूं तभी मेरे लिए चाहिए, तो कामना होती है, और कामना होकर के तद अनुकूल फिर प्रयत्न होता है। तो इसी को दर्शन शास्त्र भी जानात इच्छत करोति करके कह देता है। तो ये नियम चलता, और जब इस प्रकार से नियम के अनुसार वह चलता है, पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद कर्म प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद कभी सफलता कभी असफलता, और सफलता असफलता से ही सुख और दुख, ये प्रवाह चलता है। इसी का नाम है संसार। ये क्या है? यही है जगत। तो इस जगत में ये नियम है, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार ही ये सारा जगत चलायमान है, गतिमान है, प्रवाहमान है। तो अब यहां पर संकेत करते हैं कि यहां पर जैसे वाणी और अर्थ दोनों मिले हुए हैं, वैसे ही यहां पर आत्मा और प्रकृति दोनों मिले हुए। अब मिले हुए हैं तो इसका मतलब मिलना जहां हम समझते हैं, तो वहां कैसा समझते हैं? जैसे दूध और पानी को मिला दिया तो क्या हो गया? दूध ही प्रतीत होता, एक ही रूप प्रतीत होता, उसके दो रूप प्रतीत नहीं। तो अब दूध पानी की तरह से वह नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखना यह विशिष्टता है कि जैसे दूध और पानी का संयोग हुआ है, उसमें संयोग रूप मिलना नहीं है। तब क्या है? तो उसको एक शब्द दिया दार्शनिकों ने, कहा तादात्म्य रूप मिलना है। क्या कहा? संबंध तो है, लेकिन संबंध कैसा का? तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध नहीं। संयोग संबंध होगा तो वियोग संबंध, पृथकत्व आदि ये सब संबंध आ जाएंगे, लेकिन कहेंगे वहां संयोग संबंध नहीं है। कहा फिर कैसा संबंध है? तादात्म्य संबंध। कहा ये तादात्म्य संबंध क्या है? तो कहने लगे कि तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है जहां दो पदार्थ होते हैं वहां तो संयोग होना सिद्ध हो जाता, लेकिन जहां दो पदार्थों की सत्ता नहीं, पदार्थ एक ही है, तो वहां संयोग संबंध तो बन सकता नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कहने लगे संबंध है। तो वो कौन संबंध है? तो उसी को कहते हैं तादात्म्य संबंध। मने मिथ्याभूत जो संबंध की कल्पना, ऐसे उस संबंध को ही तादात्म्य संबंध कहते हैं। और तादात्म्य संबंध हमेशा अभेद रूप से होता है। कैसे होता है? अभेद रूप से। अन्य संबंध संयोग रूप से होते हैं, उनकी प्रतीति भी हो जाती है, विशेषता ये होती। हम बर्फ के दो टुकड़ों को लें और दोनों टुकड़ों की सत्ता अलग अलग है, तो उनको हम जब मिलाते हैं तो एक तो दिखाई देते, लेकिन दोनों की सत्ता की प्रतीति भी हमें होती है, दो टुकड़े मिले हुए। लेकिन यहां पर दूसरी सत्ता है ही नहीं, और दूसरी सत्ता है ही नहीं इसलिए जो सब जब उसके माने तादात्म्य रूप संबंध की कल्पना होती है, अभेद संबंध की कल्पना होती, तो वो अभेद रूप से ही होती है, उनमें पृथकत्व का भान होता ही नहीं। इस प्रकार से प्रकृति और वह जिसे परमात्मा कहते, वो दोनों भी क्या हैं? मिलित हैं। और जब दोनों मिलित हैं तो उसी को लेकर के ये सारा प्रवाह है, और उसके द्वारा होने वाला जितना भी कार्य है वो कैसा है, तो उसी को कहते हैं मायिक। क्या कहते हैं? मायिक। क्यों? इसके लिए बतलाया, सत्ता जब एक होती है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो इच्छा किसके लिए होगी? वही दूसरा पदार्थ नहीं है तो दूसरे पदार्थ के न होने पर इच्छा कब होगी? कोई माप, कोई भी इच्छा वहां संभव नहीं। इच्छा तभी होती है जब दूसरा पदार्थ हम समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति समुद्री यात्रा कर रहा था, और समुद्री यात्रा करते हुए वो जो है व्यापार करने कहीं गया बाहर, और व्यापार करके वापस आ रहा था। तो जब वापस आ रहा था तो व्यापार के द्वारा उसने प्राप्त किया जो धन, उसको अपने साथ में ला रहा था। अब जो है वो यात्रा करते हुए आ रहा था, तो समुद्री यात्रा थी, समुद्र में आ रहा था तो अचानक जो है उसमें ऐसी लहरें आई, जिससे हुआ क्या कि उसका जो पोत था, जहाज था, वो डूबने की स्थिति में आ गया। अब उसने देखा कि जहाज डूबा जा रहा, तो धन भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। अब धन से भी अधिक प्रेम किससे होता? का अपने से, ये तो सिद्ध ही है। तो अब जो है यह उसने जब देखा, तो अभी जहाज पूरा डूबा नहीं था, लेकिन डूबने की श्रृंखला चालू हो गई थी। तब तक उसे एक टापू दिखाई दिया, उस समुद्र में एक टापू दिखाई दिया, और जब टापू दिखाई दिया तो वो उस जहाज से कूद पड़ा और तैर करके उस टापू पर पहुंच गया। जब टापू पर पहुंच गया तो उसने देखा कि अभी जहाज पूरा डूबा नहीं है, और जब टापू पर अपने को सुरक्षित देखा तो उसके अंतर्गत इच्छा हुई कि इसमें से कुछ तो जीवन के लिए बचा लिया जाए, इच्छा। तो वो पुनः फिर कूदा और फिर समुद्र में कूद करके तैरते हुए गया, और तैर करके जहाज के पास पहुंचा। तो अब जितना भी जो कुछ ला सकता था, क्योंकि अधिक तो ला नहीं सकता था, तो उसने देखा कि भाई इसमें जो कीमती चीज हो उसे ले लिया जाए, तो वो स्वर्ण सलाका आदि होंगी उसमें। तो उसने एक दो स्वर्ण सलाका जो ले सकता था उतनी ली, और जो है अपने सिर पर बांध ली, और सिर पर बांध करके तैरता हुआ पुणे टापू पर आ गया। इतने में जहाज भी डूब गया। अब वो जो टापू पर खड़ा हुआ था विचार करने लगा कि ये स्वर्ण सलाकाएं, इनका इतना मूल्य है। ये सब विचार चलने लगा उसके जीवन, और जब विचार चलने लगा तो विचार करते करते फिर उसकी नजर जो है गई, पहले तो विचार किया बाजार में इतना मूल्य है, इतने भाव चल रहा, तो इतने मूल्य का हो जाएगा, चलो गया सो गया, लेकिन इतना बच गया तो जीवन तो कट ही जाए, ऐसा विचार करने लगा। लेकिन ये विचार कर ही रहा था तब तक उसकी टापू पर दृष्टि गई।
3: टापू को देखा तो समुद्र के अंतर्गत वह टापू था, चारों तरफ जल ही जल था और टापू पर भी कोई भी वनस्पति बालू के सिवाय और कुछ था ही नहीं। जब बालू के सिवाय न कोई वनस्पति थी, यहां तक पक्षी आदि भी नहीं। और जब उसने देखा तो फिर विचार करने लगा कि इस स्वर्ण सलाखा का मूल्य कहां है, बाजार में है, जहां कोई हमसे भिन्न है वहां मूल्य है, लेकिन यहां तो हमारे और स्वर्ण सलाखा के अलावा दूसरा कोई है, तो इस स्वर्ण सलाखा का यह मूल्य क्या है। कम से कम इस बालुकामय टापू ने हमको सुरक्षा दी, लेकिन ये स्वर्ण की सलाखा तो वो भी करने में समर्थ नहीं, तब इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी कीमत तो कहां है, कहा बाजार में, लेकिन यहां बाजार तो जाने दो, यहां कोई प्राणी है ही नहीं बालू के सिवाय, तब तो इसकी कीमत इस बालू के बराबर भी नहीं। बालू ने कम से कम हमें आश्रय दिया है, लेकिन इसकी कीमत बालू के बराबर भी नहीं। और जब ऐसा समझ में आया तो उसने उन सुवर की सलाखाओं को समुद्र में फेंक दिया। क्या किया, कहा इनकी कीमत तो इस वालू की बराबर भी नहीं है, और जब वालू के बराबर भी इनकी कीमत नहीं है तो इसको रखने का लाभ भी क्या। और उसने स्वर की सलाखाओं को फेंक दिया, केवल अपना तो अपने में ही वो मस्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है मैं हूं, जहां पर यह शब्द आता है तो वहीं तू खड़ा हो जाता। तू शब्द जहां आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता। मैं और तू ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। तू के बगैर मैं की सिद्धि नहीं है, मैं किसको लेकर के कहोगे, वही सामने वाले को लेकर के ही तो कहोगे मैं हूं, और अपने को लेकर के ही कहोगे तू है। और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किसे मैं कहोगे, किसे तुम कहोगे। और जहां पर ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या हो गया, कहने लगे वहां जब मैं ही नहीं रहा, और मैं ही नहीं रहा तो वहां इच्छा भी कैसे होगी, इच्छा का उदय भी नहीं होता। तो इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य तुमने इसलिए मैं को लेकर के कह दिया, प्रक्रिया जो है कि मैं जहां होता है वहीं इच्छा का उदय होता है, इच्छा का उदय होता है वहां प्रयत्न होता है, और प्रयत्न के अनुसार सफलता असफलता होती है, सफलता असफलता के अनुसार हमें हर्ष और विषाद होता है, सुख और दुख होता है। ये प्रक्रिया, ये एक नियम है, नियम को लिख। अब ये जो संसार के अंतर्गत जो भी अवधारणा है तो वहां पर संकेत कर दिया कि संसार का जो मूल है, संसार का जो कारण है वो कैसा है, का मिलित है, तादात्म्य संबंध वाला है। माने वहां पर प्रकृति और वह परमात्मा दोनों की मिलित अवस्था, तादात्म्य रूप से मिलित अवस्था। अब प्रकृति नाम दो, भ्रम नाम दो, भूल नाम दो, माया नाम दो, ये सब क्या है, या भ्रांति नाम दो, ये सब नाम तो हैं लेकिन एक ही वस्तु के नाम है, ये अलग अलग नहीं। चाहे उसे अज्ञान कह दो, माया कह दो, प्रकृति कह दो, भ्रांति कह दो, भ्रम कह दो।